सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की तिथि 19, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 हो रहे हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Subhendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of the Home Minister Amit Shah yesterday. Mr. Shah, who presided over the meeting, said that all the proposals were received in the favour of Subhendu Adhikari. Following his election as the BJP Legislature Party leader, Mr. Adhikari met West Bengal Governor R.N. Ravi and staked claim to form the first BJP-led government in the state. The BJP registered a historic victory in assembly elections, ending TMC's 15-year rule. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. Reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician once again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying that he has the majority. Meanwhile, the IUML, headed by Professor Khader Mohideen, has said that his party has not given a letter of support to TVK. In another surprising move, the meanwhile AMMK party leader TTV Dhinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamraj, the lone MLA elected from Mannagudi, to make AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy as the new Chief Minister. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Guyanese Health Minister and discussed the progress of India-Guyana health ties. Dr. Jaishankar, who is on a three-nation visit to the Caribbean, met Health Minister Dr. Frank Anthony on a stopover at Georgetown in Guyana. Dr. Jaishankar was in Jamaica on the first leg of his tour, then went to Suriname and will be in Trinidad and Tobago for the final leg of his visit. U.S. President Donald Trump has announced a three-day ceasefire between Russia and Ukraine, noting that the temporary truce coincides with Russia's Victory Day celebrations commemorating the then-Soviet Union's role in the World War II. In a post on Truth Social, Mr. Trump said the ceasefire would take place from 9th to 11th of May and would include a suspension of all kinetic activity between the two countries. Mr. Trump stated that the request for the temporary truce was made directly by him and noted that the agreement will also include a prisoner exchange involving 1,000 prisoners from each side. The standoff over the Strait of Hormuz has intensified after Iran rejected a US-backed draft resolution at the United Nations Security Council, calling it flawed and politically motivated. Tehran argued that the proposal will legitimize unlawful actions rather than help resolve the conflict. Iran said the only path towards stability is ending the war, lifting the US maritime blockade on Iranian ports and restoring normal shipping through the Strait of Hormuz. The draft resolution, backed by the United States along with Bahrain, Saudi Arabia, UAE, Kuwait and Qatar, seeks to protect the freedom of navigation in one of the world's most critical energy corridors. Washington has accused Iran of threatening commercial shipping and destabilizing maritime traffic. Israel and Lebanon will resume negotiations with 2 days of intensive talks facilitated by the U.S. on 14th of May and 15th of May. U.S. State Department said delegations from both countries will meet in order to form a comprehensive peace and security agreement that substantively addresses the core concerns of both countries. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत आज हम जानेंगे बेल वाली सब्जियों की खेती पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां।

खेतिया बंधुओं, आज हम बातें करेंगे खीरे और लौकी की खेती के बारे में। किसान भाई बहनों, खीरे की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई या दोमट मिट्टी, 2 से 3 बार जुताई और गर्म जलवायु की जरूरत होती है। इसकी बुआई आप इस महीने कर सकते हैं। खेत में बीज बोने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए 2 से 3 बार जुताई कर लें। खेतिया बंधुओं, आप जिस खेत में लौकी की बुआई करने जा रहे हैं उसकी मिट्टी की जांच करवा लें। मिट्टी का पीएच 6 से 7 होना चाहिए। बीज बोने के लिए अच्छी उन्नत किस्म के बीजों का चयन करें। खीरा बीज की उन्नत किस्में हैं पूसा उदय, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा बरखा और पंजाब नवीन। बीज बोने से पहले 1 ग्राम वर्विस्टिन दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेकर उपचारित कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 इंच गहराई में पौधे से पौधे की दूरी और 4 फुट की दूरी पर पंक्तियों से पंक्ति के बीच दूरी बनाकर बीज को बोएं। खेत की तैयारी करते समय 20 से 25 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं। पौधों को अधिक पोषक तत्व देने के लिए उर्वरकों का उपयोग करें। इसे आप गर्म मौसम में बो रहे हैं इसलिए अधिक सिंचाई की भी जरूरत होती है। कीटों और बीमारियों से फसल को बचाने के लिए समय समय पर खेत की निगरानी करें और जरूरत के अनुसार कीटनाशकों का उपयोग करें। ग्रामीण खेतिहर भाइयों, अगर आप चाहें तो पॉलीहाउस में भी खीरे की खेती करके अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। पॉलीहाउस में तापमान और नमी को नियंत्रित करने से फसल को बेहतर तरीके से उगाया जा सकता है। खीरे की फसल को पकने में 80 से 90 दिन तक का समय लगता है और 1 एकड़ खेत में करीब 400 क्विंटल तक खीरे का उत्पादन किया जा सकता है। आइए अब बात करें लौकी की खेती के बारे में। खेतिहर भाई बहनों, लौकी में विटामिन सी और जिंक पाया जाता है जो हमारी त्वचा और पाचन को कई तरह से लाभ पहुँचाती है। गर्मी का मौसम आ रहा है, इस समय अगर आप चाहें तो लौकी के वैज्ञानिक तरीके से खेती कर लाभ उठा सकते हैं। लौकी की खेती के लिए अच्छी तरह से ड्रेन और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर रेतीली दोमट मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। बीजों को सीधे गड्ढे में बोया जा सकता है। बीजों को बोने से पहले कार्बोडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लें। लौकी के बीज की उन्नत किस्में हैं हारूना, हजारी 4, माही 8, अनमोल F1, US 112। बीजों का अंकुरण तेज करने के लिए इन्हें 12 से 24 घंटे के लिए पानी या एक्सनिक एसिड में भिंगो दें। रोपण के बाद अंकुरण में 6 से 7 दिन लगते हैं। 1 एकड़ खेत में बोने के लिए 500 से 600 ग्राम लौकी के बीज लगते हैं। बीज बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 से 6 फीट और बीज से बीज की दूरी 2 से 2.5 फुट रखें। लौकी की फसल को मचान बनाकर उसके ऊपर आप फैला दें। लौकी की बेल जल्दी बढ़े इसके लिए इसे रस्सी से बांध देना चाहिए। पौधों को कीड़े से बचाने के लिए घर पर बने जैविक कीटनाशकों का स्प्रे करें। लौकी की पैदावार बढ़ाने के लिए सरसों की खली को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोए फिर छान कर डालें। लौकी की खेती में आप ड्रिप इरिगेशन विधि से सिंचाई कर सकते हैं। लौकी की फसल बीज बोने के 60 से 70 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। खेतिहर बंधुओं, अगर आप मचान विधि से लौकी की खेती करना चाहते हैं तो खेत को जुताकर मेड़ बनाएं। रेतीली दोमट मिट्टी में गोबर की खाद डालें। नीम से खेत का शोधन करें। बीज बोएं और बीज बोने के बाद 8 से 10 दिनों में पौधे निकलने पर मचान बनाएं। मचान के खंभों के ऊपरी हिस्से पर तार बांधें। पौधों को मचान पर चढ़ाएं। पौधों की लताओं को मचान पर फैलने के लिए छोड़ दें। इस विधि से सब्जियों को ज़्यादा धूप और

मिलती है, कीड़ों और बीमारियों से फसल को कम नुकसान होता है। मचान विधि से मौसम में और बिना मौसम भी अच्छी किस्म की लौकी मिलती है। मचान विधि से फसल में खरपतवार की भी समस्या नहीं होती है। आप अपनी सुविधा अनुसार लौकी की खेती कर सकते हैं।

दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे, और आज इस कार्यक्रम में हमने जाना लौकी की खेती कैसे की जाए या फिर बेल की सब्जियों, बेल वाली सब्जियों की खेती पर कुछ विशेष जानकारियां भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर, और आप हैं श्रोताओं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

प्रस्तुत है चिंतन। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, वो हमें परिभाषित नहीं करता। आज हमारे पास ये ताकत है कि हम नए फैसले लें, नई आदतें बनाएं और खुद को एक बेहतर दिशा में ले जाएं। अक्सर हम अपने बीते समय की गलतियों या असफलताओं से खुद को बांध लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि परिवर्तन हमेशा इसी क्षण से शुरू होता है। हर सुबह आंख खुलते ही ये स्वीकार करना है कि हम और बेहतर बन सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। हमारा आज का ये प्रयास हमारे कल को रोशन करेगा। तो चलिए इस क्षण को अपनाते हैं और हर दिन को जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत बनाते हैं।

ये था आज का चिंतन। FM के 102.4 MHz पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप हैं श्रोताओं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। प्रस्तुत करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आप सभी का स्वागत है। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी मातृभूमि को समर्पित इस देशगान के साथ।

संवेद स्वरों में भी आपने सुना ये देशगान। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और अब आइए श्रोताओं कार्यक्रम वंदना में आगे सुनते हैं गणपति भजन। आवाज है नरेंद्र चंचल की।

0: एपिसोड नंबर 43
1: कार्यक्रम वंदना में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल की आवाज में भजन, और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस।

जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाई ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7 बजने को हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में और फिर 7:10 पर होगा कार्यक्रम जरा सुनिए।

0: पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हो रहे हैं श्रोताओं, आइए आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: और श्रोताओं, आज आपको बता दें यानी 9 मई के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियां। श्रोताओं, आज के दिन ही प्रसिद्ध हिंदी कवियत्री स्नेमही चौधरी का जन्म सन 1935 में हुआ था। इनके कविता संग्रह के लिए इन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। प्रसिद्ध व्यंगकार और लेखक रविन्द्रनाथ त्यागी का जन्म भी आज ही के दिन सन 1930 में हुआ था। और स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और सुधारक रहे गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जन्म भी आज के दिन ही 1866 में हुआ था। अपने समय के अद्वितीय संसदविद और राष्ट्र सेवी थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और सुधारक भी थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के 9 वर्ष बाद गोखले का जन्म हुआ था। ये वो समय था जब स्वतंत्रता संग्राम असफल अवश्य हो गया था, किंतु भारत के अधिकांश देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की आग धधकने लगी थी। श्रोताओं, आज के दिन ही माउंट एवरेस्ट हिमालय पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोरगे का निधन सन 1986 में हो गया था। इन्हें शेरपा तेनजिंग भी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह पाने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही एडमंड हिलेरी के साथ 29 मार्च 1953 को 8,848 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। श्रोताओं, आज के दिन ही सन 1995 में हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निधन हो गया था। प्रभाकर हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्रों, संस्मरण और ललित निबंध के लिए मशहूर रहे हैं। ये दृष्टव्य है कि उनकी इन रचनाओं में कलागत आत्मपरकता होते हुए भी एक ऐसी तटस्था बनी रहती है कि उनमें चित्रणीय या संस्मरणीय ही सम्मुख हुआ है। स्वयं लेखक ने उन लोगों के माध्यम से अपने व्यक्ति को स्वीत नहीं करना चाहा है। उनकी शैली की आत्मीयता और सहजता पाठक के लिए प्रीतिकर और हृदय गृहिणी भी है। कन्हैयालाल जी ने हिंदी साहित्य के साथ पत्रकारिता को भी व्यापक रूप से समृद्ध किया है। और श्रोताओं, आज के दिन ही 1998 में प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और अभिनेता तलत महमूद का निधन हो गया था। भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक और फिल्म अभिनेता थे। इन्होंने गजल गायक के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त की थी। शुरुआत में इन्होंने तपन कुमार के नाम से गाने गाए थे। बेहद सौम्य और विनम्र स्वभाव के तलत महमूद के लिए संगीत एक जुनून था, जबकि उनकी अदाकारी ने उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार के रूप में पहचान दिलाई थी। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही गजल गायक के तौर पर अपने सफर की शुरुआत करने वाले तलत महमूद ने उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्रियों सुरैया, नूतन और माला सिन्हा के साथ भी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था। इनके योगदान के लिए सन 1992 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की यानी 9 मई के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियां। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए।
3: नमस्कार, कार्यक्रम जरा सुनिए में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके समक्ष आए हैं एक खास विषय को लेकर, जो काफी जागरूकता भरा है। श्रोताओं, आजकल हम सभी एक शब्द का प्रयोग अक्सर सुनते हैं या फिर हम खुद ही करते हैं कि वह इंसान डिप्रेशन में है या फिर वह इंसान किसी मानसिक अवसाद से ग्रसित है। अगर कोई थोड़ा सा परेशान भी रहता है तो खुद ही बोल पड़ता है कि अरे मैं डिप्रेशन में हूँ या थोड़ा सा डिप्रेस हो गया हूँ। तो श्रोताओं, आखिर यह डिप्रेशन या मानसिक अवसाद क्या है? क्या सही में हम इससे वाकिफ हैं, या क्या सही में यह इतना खतरनाक होता है कि इसे पीड़ित इंसान आत्मघाती कदम भी उठा ले? तो श्रोताओं, इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब हमारे आज के कार्यक्रम में आप सभी को मिलेंगे, क्योंकि इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है शहर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार गिरी को। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर दीपक कुमार गिरी का। नमस्कार महोदय, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि यह मानसिक अवसाद या फिर डिप्रेशन क्या है और इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं?
4: नमस्कार। देखिए, डिप्रेशन या उदासी, ये अगर हम लोग अपने रोजमर्रा में देखेंगे तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि आज लो मूड है, आज मन ठीक नहीं है, उदास लग रहा है। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ ये उदासी या लो मूड खत्म हो जाता है। लेकिन मानसिक उदासी या मानसिक अवसाद या उदासी की बीमारी तब कहेंगे जब यही उदासी लंबे समय तक रहती है और इसके वजह से हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़, जो हमारे दैनिक जो हमारे कार्यकलाप हैं, वो प्रभावित होते हैं। जैसे अगर गृहिणी है तो वो घर का काम नहीं कर पा रही है, और अगर कोई ऑफिस जाने वाला है तो वो अपना ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि ये, और ये लंबे समय तक चल रहा है और ये आपके हर गतिविधि को, हर एक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है, तब ये मानसिक अवसाद है या डिप्रेशन की बीमारी है।
3: जी, तो ये किस उम्र के लोगों को हो सकता है?
4: डिप्रेशन की बीमारी की कोई उम्र सीमा नहीं है, ये किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है। बच्चों में भी हो सकता है, वृद्ध में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि किस उम्र में होगा या किस जेंडर के लोगों में होगा, किसी को भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि यह या तो कम उम्र में होती है या फिर जब बड़ी उम्र में, ज़्यादा उम्र में, जो लेट ऑनसेट डिप्रेशन भी कहते हैं, या फिर महिलाओं में औरों की अपेक्षा इन लोगों में इसकी ज़्यादा प्रिवेलेंट देखने को मिलती है।
3: डॉक्टर साहब, जो मानसिक अवसाद या डिप्रेशन की हम लोग बातें कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण मानते हैं आप?
4: मानसिक अवसाद के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो जेनेटिक्स, अगर घर में किसी को है, घर में आपके परिवार में आपके माँ के तरफ से या आपके पिताजी के तरफ से किसी को इस तरह की बीमारी है तो औरों की अपेक्षा आप में इसमें होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। बचपन में अगर उस तरह की कोई दुर्घटना हुई हो, उस तरह के स्ट्रेस से गुजरे हों, तब फिर ये बड़ी उम्र में ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें भी डिप्रेशन को देखा गया है, डिप्रेशन की बीमारी देखा गया है। खास करके जब स्ट्रेस होता है, किसी कोई स्ट्रेस अगर बहुत लंबे समय तक चला जाता है, क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, तो उस केस में वो बाद में चल के घबराहट या उदासी की बीमारी का कारण हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं में जब बताया कि महिलाओं में खास करके ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है उसके साथ ये मूड स्विंग्स होते हैं, तो कई बार उस समय भी उन्हें उदासी के लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं, या फिर जब मासिक धर्म रुकने का समय होता है उस समय भी मूड स्विंग्स होते हैं, उस समय इन लक्षणों को ज़्यादा देखा जाता है। और आजकल एक जो हम लोग सबसे एक चीज़ जो देखने को हमें मिल रहा है, वो कि बच्चों में भी अब यह बीमारी या उदासी की बीमारी धीरे धीरे उसकी वो बढ़ रही है। पहले ये कहा जाता था कि बच्चों में उदासी नहीं होती है, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों में भी ये देखा जाता है। तो कई बार पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लोड बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा बच्चों से एक्सपेक्टेशन, घर का हो, स्कूल का हो, परिवार का हो या फिर अपने सहपाठियों का हो, तो वो एक्सपेक्टेशन कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से भी बच्चे उदासी की ओर बढ़ जाते हैं। कई बार बहुत अच्छे बच्चों को जो केयर नहीं मिलता है, ठीक है, जो एक उनके साथ समय गुजारना वो नहीं हो पाता है कई बार परिवार की तरफ से, चूँकि एकल परिवार हो गया। हम लोग ये भी देखते हैं कि एकल परिवार हो गया, माता पिता दोनों ही किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, तो जो एक समय होना चाहिए बच्चों के लिए वो नहीं मिल पाता, और कई बार ये भी अवसाद का कारण बन जाता है, क्योंकि बच्चे उस समय अपने अंदर होने वाले विचारों को या अपने अंदर होने वाले जो द्वंद्व को वो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो कई बार हम लोग देखते हैं ये भी उनके कारण बन जाता है।
3: डॉक्टर साहब, कैसे कोई समझ सकता है कि वो अभी डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है या फिर वो मानसिक अवसाद की समस्या से ग्रसित है?
4: अवसाद के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, उन लक्षणों की अगर जानकारी हो तो यह आपको पता चल सकता है कि अवसाद की बीमारी है या अवसाद के लक्षण हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला कारण है उदासी। जैसे बताया कि यह उदासी और उदासी से अपेक्षा बिल्कुल अलग होती है और यह आपके हर चीज को इफेक्ट करती है। किसी चीज़ में कम मन नहीं लगना, किसी चीज़ में मतलब किसी भी चीज़ में मन लगेगा ना, आपको अच्छा खाने में, ना अच्छा पहनने में, ना बाहर घूमने में, जो भी पहले आपके इंटरेस्ट की चीज़ें थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। कोई अगर अच्छा बात भी करे तो उसमें भी आपको चिड़चिड़ापन हो लगे कि अकेले छोड़ दें, अकेलापन अच्छा लगने लगता है ज़्यादातर, फिर चिड़चिड़ापन जैसे बताया, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगती है, बार बार इमोशनल हो जाते हैं, बार बार रुलाई आने लगती है, कई बार घबराहट बेचैनी इसके साथ होने लगती है। तो ये सारी अगर लक्षण है आप में, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कई बार ऐसा लगने लगता है जब उदासी की बीमारी बढ़ने लगती है तब फिर ऐसे फीलिंग्स आते हैं कि हम ही बेकार हैं, दुनिया बेकार है, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, कुछ मेरे में ही कमी है, तो गिल्ट फीलिंग्स आने लगती है, और कई बार यही बार बार मरने के फिर विचार आने लगते हैं, और जब सीवियर हो जाता है तब आत्महत्या के विचार या आत्महत्या उस स्तर तक भी यह बीमारी चली जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन लक्षणों को समझना, इन लक्षणों को जानना, सिर्फ अपने ही में ही नहीं, अपने आसपास में अगर आप स्टूडेंट्स हों या फिर अगर आप कहीं काम करते हो तो अपने आसपास में भी लोगों में अगर इस तरह की कुछ लक्षण देखने को मिलती हैं तो उनसे बात कीजिए और इन चीज़ों को समाधान करने की कोशिश कीजिए।
3: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बच्चों की बात की, तो आजकल स्कूल जाने वाले बच्चे भी काफ़ी तनाव में रहते हैं, तो इसका क्या कारण मानते हैं? जैसे कि आपने कुछ कारणों की आपने बातें की, फिर भी हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार में बताने की कृपा करें कि आखिर क्या कारण मानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल बहुत तनाव में रहते हैं?
4: हाँ, ये आज जैसे पहले भी बताया कि ये अब बहुत एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है कि बच्चों में उदासी, क्योंकि ये माना जाता था कि ये खेलने कूदने का उम्र है तो सीखने का उम्र है, तो इस उम्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हैं, अब बच्चों में भी ये बहुत बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, और कई बार ये बहुत ही खतरनाक भी हो जाती है, बहुत सीवियर भी हो जाता है। तो कुछ कुछ कारण है जिसमें सबसे प्रमुख कारण है एकाकीपन। जैसे पहले बच्चों का अगर संयुक्त परिवार जब थी तो बच्चों को शेयर करने के लिए अपने उम्र के ही बहुत सारे बच्चे घर में ही मिल जाते थे, या फिर वो अपने दादा दादी और नाना नानी या अपने मौसी बुआ उन लोगों के साथ शेयर कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये संयुक्त परिवार से एकल परिवार होने लगा तो वो ये चीज़ें बच्चों को शेयर करने के लिए नहीं मिलता है, तो फिर कई बार होता है कि बच्चे कहीं कहीं से गलत जगह से कुछ कुछ सीख लेते हैं। कई बार ऐसे बच्चे नशे के भी आदि हो जाते हैं या अपने से बड़े उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती हो जाती है और उस समय कुछ कुछ गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। तो ये एकाकीपन, बच्चों के लिए पर्याप्त समय ना होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि अपेक्षाएँ, बच्चों से अब बहुत सारी ज़्यादा ही अपेक्षाएँ हो गई हैं। अगर मान लीजिए कि घर में आप एक ही बच्चा है तो कई बार ऐसा देखने का हम लोग को मिलता है कि एक ही बच्चे से ही बहुत सारी अपेक्षाएं हो जाती हैं, वो पढ़ाई भी अच्छा करे, खेलकूद में भी अच्छा करे, अच्छा कलाकारी भी करे, तो कई बार बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें कई बार उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, अपेक्षाएँ कई बार ज़्यादा हो जाती हैं, और जब बच्चा वो नहीं कर पाता है तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वह उदासी का शिकार हो रहा है। और एक बार और चीज़ें हैं, अगर घर में इस तरह का माहौल है या घर में किसी को इस तरह की दिक्कतें हैं, इस तरह की बीमारी है, तब भी बच्चों में होने की संभावना ज़्यादा होता है। तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, बचपन का जो अनुभव होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही समय है जब वो ग्रोइंग एज है, उस समय एक अच्छा माहौल, एक अच्छा परिवार, और एक अच्छी चीज़ें उसे बतानी चाहिए ताकि कैसे आप वो स्ट्रेस को डील कर सके, कैसे आने वाले समय में तनाव को डील कर सके, उसे कैसे व्यवस्थित कर सके, ये सारी बहुत चीज़ें बहुत जरूरी।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मानसिक अवसाद क्या है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसी विषय पर शहर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार गिरी के द्वारा दी गई जानकारी को। उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आप सभी को आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, अब आज के कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक, लेकिन जाने के पहले हम आपको यह बता दें कि कार्यक्रम के अगले अंक में भी इसी विषय पर यानी मानसिक अवसाद विषय पर ही डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई शेष जानकारी को भी हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो श्रोताओं, आवाज के कार्यक्रम से विवेक आदित्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए।
0: कार्यक्रम जरा सुनिए, श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:21 हो रहे हैं, प्रस्तुत करते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के कार्यक्रम में श्रोताओं आज हमने शामिल किए हैं भोजपुरी लोकगीत, कलाकार हैं हेमा देवी।

लोकगीतों के कार्यक्रम में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत कलाकार थी हेमा देवी और साथ ही इसी के साथ श्रोताओं आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। सुबह के 7:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। कार्यक्रम सुरांजलि में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं रविंद्र संगीत। कलाकार हैं पंकज कुमार मलिक।

बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: इसी के साथ श्रोताओं, बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में चर्चा का विषय है अल्जाइमर। इसके लक्षण, कारण और बचाव पर हमें विस्तृत रूप से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, आज बातें अल्जाइमर्स के बारे में। अल्जाइमर्स है क्या, किस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं, किन कारणों से ये होता है और इसका क्या निदान हो सकता है, इन तमाम बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी। डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि अल्जाइमर्स वास्तव में है क्या।
2: हम सभी लोग कुछ न कुछ भूल जाते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो, कोई चीज कहीं रखी हो, या सबसे ज्यादा परीक्षा देते समय हम अक्सर कुछ बात भूल जाते हैं, यह एक सामान्य बात है। लेकिन अगर आप अक्सर सभी जरूरी और गैर जरूरी बातें भूल जाते हैं तो यह बहुत ही गंभीर बात है, और इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप अल्जाइमर से पीड़ित हैं। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है जिसे आम भाषा में भूलने की बीमारी कहा जाता है। ये एक मनोदशा है, मनोभ्रंश है, जिसको हम लोग डिमेंशिया का भी एक छोटा रूप होता है जो धीरे धीरे बढ़कर अल्जाइमर का रूप ले लेता है। अल्जाइमर रोग वैसे उम्र के किसी भी दौर में हो सकता है, लेकिन इसके होने की आशंका 60 वर्ष के बाद ही ज्यादा होती है।
1: आपका कहने का मतलब कि ज्यादातर उम्र दराज लोगों में?
2: जी जी बिल्कुल। बीमारी के शुरुआती लक्षणों में जैसे हाल की घटना कुछ घटी या कुछ ऐसी बातचीत हुई, वो अक्सर भूल जाते हैं, और ये जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वो उनकी आदत कमजोर होती जाती है, यहाँ तक कि वो रोजमर्रा के कार्य को करने की क्षमता भी उनको प्रभावित होती है। और ये दिमाग की सबसे बड़ी समस्या है, और ये हमेशा समय के अनुसार बढ़ते रहता है। इसमें यादस पूरी तरह से कमजोर हो जाती है, जिससे जीवन पर बुरा असर पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं जो सामान्य रूप से बार बार दिखाई पड़ती है। बार बार किसी बातों को दोहराने की आदत हो जाती है, उन्हें ठीक तरह से वो याद नहीं रख पाते हैं, तुरंत की गई बात भी वो भूल जाते हैं, चीजें रखकर भूल जाना, या फिर नहीं उस चीज का नहीं मिलने से गुस्सा आना, अपने पहचान खो जाना, रोजमर्रा की वस्तुएं और करीबी लोगों का नाम तक भूल जाना, वस्तुओं का पहचान न कर पाना, अपना विचार व्यक्त न करना पाना, बातचीत में भाग लेने के लिए अगर किसी से बातचीत हो रही है तो वो सही शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं, कमजोर यादस की वजह से उनमें लोगों से घुलने मिलने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, जो उनका सामाजिक जो परिवेश है, जो उनके सामाजिक गतिविधि है, वो काफी प्रभावित होती है।
1: जैसे घर में किस तरह की घटनाएं हो सकती है जिससे कि पता चले कि वो अल्जाइमर्स के शिकार हो रहे हैं?
2: उनके व्यक्तित्व व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता रहेगा, अवसाद होगा, अवसाद मतलब कि डिप्रेशन में जाएंगे, उदासीन रहेंगे, समाज से दूरी बनाकर रखेंगे, उनका मिजाज हमेशा फ्लैक्चुएट होता रहेगा, दूसरों पर विश्वास करना छोड़ देंगे, चिड़चिड़ापन और थोड़ा आक्रामक भी हो जाते हैं कभी कभी, सोने की जो आदत है उनको, जो स्लीप नींद जो है उनमें थोड़ा बदलाव हो जाता है।
1: तो आप आमतौर पर जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से उनके घर वाले व्यवहार उनसे करें कि ताकि वो अल्जाइमर्स होते हुए भी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकें?
2: अल्जाइमर का निदान करने के दौरान डॉक्टर उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अल्जाइमर से जुड़े हुए लक्षण जो कि मैंने पहले बताया है, परिवार में उनकी मेडिकल हिस्ट्री, वर्तमान या पिछली कोई भी स्वास्थ्य स्थितियां जिसमें उनकी कभी स्थिति खराब हुई हो, वर्तमान में या बीते समय में कुछ भी वो मेडिसिन ले रहे हों, आहार शराब का सेवन करते हैं कि नहीं, और भी अन्य तरह की जीवन शैली के बारे में जानकारी ली जाती है, और उसके आधार पर ही अल्जाइमर का इलाज करने की कोशिश की जाती है। ऐसे पेशेंट को परिवार का पूरा सहयोग चाहिए, समाज के लोगों को भी उनका सहयोग

0: डॉक्टर साहब आपने काफी उपयोगी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में श्रोताओं आपने जाना अल्जाइमर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही थी डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी राजेश कुमार। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
6: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
5: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
6: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। इस समय सुबह के 8 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 का वक्त होगा मॉर्निंग न्यूज का और 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, माफ कीजिएगा, आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। समाचार प्रभात आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता सुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जाँच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
7: 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas, or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी

0: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है, गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। गिरिडीह पहुंची अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। राज्य के उपभोक्ताओं को 450 रूपये में गैस सिलेंडर या 200 रूपये सब्सिडी देने का किया अनुरोध। रांची जिला प्रशासन आज करेगा निजी स्कूलों के साथ बड़ी बैठक। आरटीई नियमों के पालन पर प्राचार्यों को दिए जाएंगे सख्त निर्देश। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज के लिए जारी किया ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड ओलंपिक संघ के बीच हुई अहम बैठक। 2036 ओलंपिक के लिए राज्य में बनेगा विशेष रोडमैप। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि जिस तरह बंगाल की जनता ने टीएमसी के कुशासन को नकारा है, उसी तरह झारखंड की जनता भी भ्रष्टाचार से त्रस्त है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं।

0: अभिकर्ता का चयन हुआ, इनके जो विभागीय मंत्री थे बिना वांछित पेपर के वो अपने चहेतों को काम दिया, वो ठेकेदारी बांट दिए और ये पैसों का बंदरबांट हुआ उस समय। और आज उसी का नतीजा झारखंड की आम जनता झेल रही है और भ्रष्टाचार के वजह से आज नल जल योजना जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना, आज आम लोगों को पानी की किल्लत हो रही है, आज आम लोग परेशान है।
1: राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कांग्रेस के प्रमुख चुनावी वादे को लागू करने का अनुरोध किया है। मंत्री ने राज्य के उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने या 200 रुपए की सीधी सब्सिडी देने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने जोर देकर कहा कि गठबंधन सरकार ने जनता से यह वादा किया था जिसे अब पूरा करने का समय आ गया है।
2: गैस 400 रुपए में हम देंगे, हम अपने वित्तीय संसाधनों को भी देखेंगे। अब इसमें कोई मुख्यमंत्री जी से खींच की बात नहीं है, नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन हम अपने इश्यूज की चर्चा करते रहेंगे। इसमें सरकार और मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई नाराजगी की बात नहीं होनी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने 400 रुपए पर गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, आप इस पर करिए, मैसेज तो जनता के बीच जाना चाहिए।
1: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भाषा संबंधी विसंगतियों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेन्द्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार को शामिल किया गया है। रांची जिला प्रशासन ने जिले के सभी निजी स्कूलों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। उपायुक्त की अध्यक्षता में यह बैठक आज रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड से जुड़े सभी निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक में आरटीई के तहत बच्चों के नामांकन और नियमों के पालन से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। रांची नगर निगम ने पूरे शहर में सोलर लाइटें लगाकर सड़कों और पार्कों को रोशन करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य शहर को ग्रीन सिटी बनाना और बिजली बिल कम करना है। मेयर रोशनी खलको ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे रांची न केवल आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
3: बिजली की बचत आज के दिन में बहुत जोर, जिस तरह से बिजली की खपत हो रही है निरंतर गांव से लेकर के शहर में भी, ऐसे में सोलर पैनल के माध्यम से सभी सरकारी भवन, इनफैक्ट नगर निगम की जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है इस पे भी हम लोगों ने नगर आयुक्त के साथ मिलकर के आदेश दिया है इसके कि जल्द से जल्द नगर निगम की बिल्डिंग पर भी सोलर पैनल लगा दे।
1: राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपी अरविंद सिंह को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने इस मामले में एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले के नीमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार में कल देर शाम एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हैं। उपायुक्त राम निवास यादव ने स्वयं घटनास्थल और अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। उपायुक्त ने लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा है।
4: ड्राइवर ने ट्रक को अनियंत्रित होके पूरी मार्केट में उसने घुसाया है, बहुत लोगों को टक्कर मारी है। यहाँ जो अभी इंजर्ड है और धनबाद में भी जो हमारा SRP हॉस्पिटल है, JP हॉस्पिटल है, PMCH है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो भी वहाँ पे पहुँचता है उसको सही समय इलाज करा जाएगा।
1: रांची के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में बांग्ला सांस्कृतिक मेला

0: 2016-2026 की भव्य शुरुआत हो गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में बांग्ला संस्कृति के अमूल्य योगदान की सराहना की। रांची सदर अस्पताल में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान थैलेसीमिया मरीजों के जज्बे और उनके जीवन के संघर्षों को सम्मानित किया गया। विशेषज्ञों ने सुरक्षित रक्तदान और इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया ताकि भविष्य में इसे रोका जा सके।
1: गजल मशीन हमारे यहाँ हर जगह है। सदर अस्पताल में भी कंफर्मेटरी जांच होता है, रांची में विशेष व्यवस्था है और रांची में पेशेंट्स भी काफ़ी हैं। क्योंकि हम लोग स्क्रीनिंग ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा पेशेंट्स निकलते हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग सबके लिए ब्लड की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं।
0: राज्य में 14 मई तक रुक रुक कर बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने विशेष रूप से आज के लिए रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड को खेल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर राज्य में खेल विकास की नई रूपरेखा साझा की। बैठक का मुख्य फोकस 2036 ओलंपिक रहा। चीन में चल रहे एएफसी अंडर 17 महिला एशियन कप से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय टीम ने लेबनान को 4-0 से करारी शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शुरुआती हार के बाद टीम ने यह शानदार वापसी की है। झारखंड के लिए यह गौरव का पल है क्योंकि इस टीम में राज्य की 4 स्टार खिलाड़ी हैं। एलिजाबेथ लकड़ा, सूरजमणि कुमारी, अनुष्का कुमारी और दिव्यानी लिंडा इसमें शामिल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, शुभेंदु बंगाल के अधिकारी। प्रभात खबर के शब्द हैं, जेटेट मामले में 5 मंत्रियों की कमेटी तय करेगी जिलों के लिए भाषा। हिंदुस्तान वेतन घोटाला मामले में लिखता है, बोकारो से कई दस्तावेज लेकर लौटी जांच टीम। और दैनिक जागरण की सुर्खी है, गिरिडीह में लोगों को रौंदते हुए बाजार में घुसा ट्रक, 5 लोगों की मौत। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। गिरिडीह पहुंची अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, राज्य के उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर या 200 रुपए सब्सिडी देने का किया अनुरोध। रांची जिला प्रशासन आज करेगा निजी स्कूलों के साथ बड़ी बैठक। आरटीई नियमों के पालन पर प्राचार्यों को दिए जाएंगे सख्त निर्देश। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज के लिए जारी किया ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड ओलंपिक संघ के बीच हुई अहम बैठक। 2036 ओलंपिक के लिए राज्य में बनेगा विशेष रोड मैप। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम फिल्म संगीत में। फिल्मी गीतों के आज के सफर में श्रोताओं आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। नमस्कार। भारतीय राजनीति के पुण्य श्लोक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसा नाम है जो सादगी, बौद्धिकता और नैतिकता का पर्याय माने जाते हैं। 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जन्मे गोखले केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि एक महान समाजसेवी, विचारक और सुधारक भी थे। इनकी जयंती है आज और आज इनकी जयंती के अवसर पर हम इन्हें याद करते हैं। इन्हें याद करना भारत के उस स्वर्णिम वैचारिक काल को याद करना है जिन्होंने देश की आजादी की नींव संवैधानिक और नैतिक मूल्यों पर रखी। श्रोताओं, गोखले का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था लेकिन इनके संस्कार असाधारण थे। गरीबी के बीच पले बढ़े गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी शिक्षा के दौरान ही अनुशासन और ईमानदारी का परिचय दिया। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और बाद में वहीं प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनके गुरु महादेव गोविंद राणा थे जिनके प्रभाव ने गोखले के भीतर समाज सुधार और आर्थिक न्याय की लौ जलाई। श्रोताओं, गोखले की बुद्धिमत्ता का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। वे अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के प्रकांड विद्वान थे। इसी कारण उन्हें कम उम्र में ही भारतीय अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ कहा जाने लगा। गोखले का संघर्ष तलवार या हिंसा का नहीं था बल्कि तर्क, कलम और संवैधानिक मर्यादा का था। वे नरम दल के प्रमुख नेता थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों को तर्क और न्यायपूर्ण मांगों के जरिए सुधार के लिए मजबूर किया जा सकता है। आज इनकी जयंती पर हम इन्हें नमन करते हैं।

मन्नाडे की आवाज़ में फिल्म काबुलीवाला का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ रहे थे, तब गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में उनके पक्ष में समर्थन जुटाया। उन्होंने खुद दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की और गांधी जी के संघर्ष को करीब से समझा, और यही कारण है कि गांधी जी उन्हें अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी ने उनके बारे में कहा था कि गोखले क्रिस्टल की तरह शुद्ध, कोमल और स्पष्ट थे। उनका मानना था कि भारत तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वो सामाजिक बुराइयों से घिरा है। वे कहते थे कि शिक्षा ही एकमात्र अस्त्र है जो भारतीयों की चेतना को जगा सकता है। उन्होंने भारत के कोने कोने में प्राथमिक शिक्षा पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और एकता पर बल दिया। उन्होंने वेल्बी कमीशन के सामने भारत की आर्थिक बदहाली और अंग्रेजों द्वारा धन की निकासी के खिलाफ सशक्त गवाही भी दी। श्रोताओं, गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन हमें ये संदेश देता है कि साध्य जितना पवित्र हो, साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए। गोखले ने अपनी आरामदायक नौकरी छोड़ दी ताकि वे खुद को पूरी तरह से देश सेवा में झोंक सकें, और उनका त्याग हमें सिखाता है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए व्यक्तिगत सुखों की आहुति देना ही शायद सच्ची महानता है।

0: फिल्म लीडर का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और श्रोताओं, गोपाल कृष्ण गोखले 49 वर्ष की अल्पायु में ही 19 फरवरी 1915 को इस संसार को विदा कह गए, लेकिन उनके द्वारा बोए गए संवैधानिक सुधारों के बीज आगे चलकर पूर्ण स्वराज का आधार बने। एक ऐसे समाज सुधारक रहे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारतीय राजनीति को संजीदगी और शिष्टाचार सिखाया। आज उनकी जयंती पर भारत के युवाओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे गोखले को के बताए सेवा और शिक्षा के मार्ग पर चलकर एक सशक्त, शिक्षित और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण करेंगे। इसी के साथ श्रोताओं, ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है समाचार, आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय को सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ

समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्र तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं लगातार 4थी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में गुरुवार तक लू चल सकती है। मौसम विभाग ने कल तक देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम सुरंजना हम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।

0: जलवायु और लिंग, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। गांव की महिलाएं जो खेती में काम करती हैं, इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अक्सर उनकी बात सुनी ही नहीं जाती और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपदा के वक्त जैसे बाढ़ या सूखे में कैंप्स या आश्रय में उनके साथ यौन हिंसा का खतरा भी होता है। लेकिन इन्हीं महिलाओं के पास एक ऐसा ज्ञान भी होता है जो जलवायु संकट से लड़ने में मदद कर सकता है। बस जरूरत है उन्हें योजनाओं और फैसलों में शामिल करने की। क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में हर 3 में से लगभग एक महिला के अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रस्तुत है सुरंजना। भारतीय संगीत के इतिहास में जब भी नजाकत, तहजीब और मखमली आवाज

जिसका जिक्र होता है, तलत महमूद का नाम सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। तलत महमूद केवल एक गायक नहीं थे, बल्कि वे एक युग थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा और भारतीय सुगम संगीत को अपनी गायकी से एक नई गरिमा और ऊंचाई प्रदान की। आज इनकी पुण्यतिथि पर है, हम इन्हें याद करते हैं। और इन्हें याद करना दरअसल उस दौर को याद करना है जब संगीत में शब्द बोले नहीं बल्कि महसूस किए जाते थे। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुरंजना आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो साथी दीपिका के साथ। चौबीस फरवरी 1924 को लखनऊ के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे तलत महमूद के व्यक्तित्व में उस शहर की नजाकत और तहजीब रची बसी थी। लखनऊ की वो मिट्टी जहां उर्दू शायरी और मौसिकी का संगम था, तलत की आवाज में एक खास किस्म की कशिश बनकर उभरी। उनकी आवाज में एक स्वाभाविक कंपन था जिसे शुरुआती दौर में कुछ लोगों ने कमजोरी माना, लेकिन बाद में यही उनकी सबसे बड़ी पहचान और ताकत बनी। आज कार्यक्रम सुरंजना में हम आपको लिए चलते हैं तलत महमूद की गायकी के उस सफर में जहां शब्द बोले नहीं बल्कि महसूस किए जाते थे।

फिल्म दाग का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना तलत महमूद की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल हैं और इस संगीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन की जोड़ी ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुरंजना।

श्रोताओं, तलत महमूद को किंग ऑफ गजल्स कहा जाता था। उन्होंने गजल गायकी को महफिलों से निकालकर आम आदमी के दिलों तक पहुंचाया। उनकी आवाज में जो दर्द और ठहराव था वो सीधे रूह को छू जाती थी। तलत की सबसे बड़ी खूबी उनका स्पष्ट उच्चारण था। वे हर शब्द को इतनी खूबसूरती और स्पष्टता से अदा करते थे कि सुनने वाले को शायरी का हर पहलू समझ आ जाता था।

फिल्म बरादरी का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना। एक बार फिर से तलत महमूद की आवाज़ है, संगीत बद किया है नौशाद ने और इस गीत को लिखा है खुमार बारा बांकवी ने। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंचना।

श्रोताओं, तलत महमूद की आवाज में एक अजीब सी उदासी और रोमानियत का मिश्रण था। जब वे तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कलाकार की बेबसी उनकी आवाज में छलक रही हो। 50 और 60 के दशक के स्वर्ण युग में तलत महमूद हर बड़े संगीतकार की पहली पसंद थे। अनिल बिस्वास, नौशाद, सी रामचंद्रन, एस डी बर्मन और मदन मोहन जैसे दिग्गजों ने उनकी आवाज को बेहतरीन इस्तेमाल किया। उनके अमर गीत हैं, जाएं तो जाएं कहां और ऐ मेरे दिल कहीं और चल, फिर वही शाम वही गम, इन गीतों ने जैसे उन्हें अमर कर दिया और वे गीत आज भी तन्हाई और विरह के सबसे बड़े साथी माने जाते हैं। एक और खास बात आपको बताएं श्रोताओं कि एक समय था जब तलत महमूद को ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की आधिकारिक आवाज माना जाने लगा था। इन दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर दर्द और भावनाओं का जो समा बांधा उसकी मिसाल मिलना तो मुश्किल है।

फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना। इस गीत को संगीतबद्ध किया है एसडी बर्मन साहब ने और बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से कार्यक्रम सुरंजना श्रोताओं आप सुन रहे हैं और आज का ये कार्यक्रम हमने समर्पित किया है गायक तलत महमूद को। श्रोताओं, तलत महमूद ने न केवल फिल्मों तक ही खुद को सीमित रखा बल्कि गैर फिल्मी गजलों ने भी लोकप्रियता के नए कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए। मिर्ज़ा गालिब, दाग दहलवी और जिगर मुरादाबादी जैसे शायरों की गजलों को उन्होंने अपनी आवाज़ देकर जन जन तक पहुँचाया। उनकी गायकी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के बीच एक सेतु का काम किया। उन्होंने ये साबित किया कि बिना शोर शराबे के धीमी आवाज में भी पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया जा सकता है। और अगला गाना हमने लिया है फिल्म देवदास से। आवाजें हैं तलत महमूद की, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी साहब और धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।

तलत महमूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक थे। वे पहले भारतीय गायक थे जिन्होंने विदेशों में जाकर बड़े पैमाने पर कॉन्सर्ट किए। रॉयल अल्बर्ट हॉल जो लंदन में है, यहाँ से लेकर अमेरिका और अफ्रीका तक उनकी आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोला। इन्होंने भारतीय संस्कृति और संगीत के राजदूत के रूप में भी काम किया। तलत महमूद श्रोताओं एक बेहद शालीन और विनम्र इंसान थे। इनकी शख्सियत में वही ठहराव था जो उनके गीतों में मिलता था। संगीत के बदलते दौर में जब शोर बढ़ने लगा तब उन्होंने खुद को धीरे धीरे पीछे कर लिया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों और गायकी की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया।

फिल्म एक गांव की कहानी। इस फिल्म का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और धुन बनाई है सलिल चौधरी ने। श्रोताओं, भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक रहे तलत महमूद ने फिल्मों में भी काम किया। इन्होंने गजल गायक के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त की। शुरुआत में इन्हें तपन कुमार के नाम से जाना जाता था। बेहद सौम्य और विनम्र स्वभाव के तलत महमूद के लिए संगीत एक जुनून था। इनके संगीत और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सन 1992 में पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। आज इनकी पुण्यतिथि पर हम इन्हें नमन करते हैं। और इसी के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम सुरंजना अब संपन्न होता है।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
5: 8700001424।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और श्रोताओं आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। प्रस्तुत करते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के अंक में हम आपको सुनवा रहे हैं ख्याल गायन राग देशकर में। कलाकार हैं विदुषी किशोरी अमोनकर।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्रोताओं भी आप सुन रहे थे ख्याल गायन राग देशकर में। कलाकार थी विदुषी किशोरी अमोनकर। और इसी के साथ श्रोताओं आज का ये कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है समाचार। आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव

संभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Suvendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal this morning. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Governor R.N. Ravi will administer the oath of office and secrecy to the Chief Minister and members of the new cabinet. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, along with several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states will attend the event. The ceremony coincides with the 25th of Baisakh, the birth anniversary of Rabindranath Tagore, giving the event added cultural and symbolic significance. The government has appointed Lieutenant General N.S. Rajasubramani as the next Chief of Defence Staff, CDS. Ministry of Defence said that Lieutenant General Subramani will also serve as Secretary, Department of Military Affairs, with effect from the date of assumption of charge and until further orders. He will assume office after General Anil Chauhan completes his tenure on 30th of this month. The government has appointed Vice Admiral Krishna Swaminathan as the next Chief of the Naval Staff. Ministry of Defence said that Vice Admiral Swaminathan is currently serving as the Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command. He will succeed Admiral Dinesh Kumar Tripathi, who retires on 31st of this month. The Uttar Pradesh government is rapidly moving towards making Census 2027 more transparent, technology-driven and accurate. Chief Minister Yogi Adityanath formally launched the first phase of Census 2027 in the state on Thursday. In continuation of this initiative, a self-enumeration session under Census 2027 was organized on Friday, and many ministers of state government and MPs completed their self-enumeration and marked his participation in the process. This includes Deputy Chief Ministers Keshav Prasad Maurya and Brijesh Pathak, Ministers of State Narendra Kashyap, Kapil Dev Agarwal and MP from Dumaria Ganj Jagdambika Pal. For the extensive publicity and outreach of Self-Enumeration 2027, the Yogi government will conduct awareness campaigns from the state level down to district and village levels. Instructions have also been issued to establish help desks and assistance centres for the convenience of the citizens. Defence Minister Rajnath Singh and Union Home Minister Amit Shah have offered tributes to Maharana Pratap on his birth anniversary. In a social media post, the Defence Minister described Maharana Pratap as a symbol of indomitable valour and unwavering pride, who dedicated his entire life to the defence of the motherland. Mr. Singh said that Pratap's unparalleled courage, valour and sacrifice will forever be etched in golden letters in the annals of Indian history. He added that the struggles of Maharana Pratap for the honour and independence of the motherland will continue to inspire generations to come. National Legal Services Authority will organise the second National Lok Adalat of 2026 across the country today. Talking to Akashwani News Member Secretary Nalsa, Sanjeev Pandey said that the initiative aims to provide amicable settlement of disputes and reduce the burden on courts through participatory and public-centric mechanisms. He said that a wide range of disputes are taken up during the Lok Adalat, including criminal compoundable cases, cheque dishonour matters and bank recovery disputes. Two new suspected cases of Hanta virus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts race to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. The announcements in locations thousands of miles apart will fuel concern about the spread of a virus so far associated with three deaths, though the World Health Organization has repeatedly said the risk of the wider public is low and the virus does not transmit easily. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना आज से भारत दौरे पर। अमेरिका ने ईरान को हथियार बनाने में सहयोग के आरोप में 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना आज से 15 मई तक भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे। श्री मैकेना कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमवार को वे भारतीय खाद्य आयातक मंच और एसोचैम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मंगलवार को श्री मैकेना वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और CII द्वारा आयोजित व्यापार शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब श्री पीयूष गोयल ने 30 जनवरी को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 4 वर्षों में विकसित देशों के साथ 8 मुक्त व्यापार समझौते FTA किए हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति GDP भारत की तुलना में काफी अधिक है। ग्रेटर नोएडा में ICAI वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंट्स को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि FTA पूरे यूरोप को कवर करते हैं, जिसमें 27 देशों का यूरोपीय संघ और 4 देशों का EFTA शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही चिली के साथ एक FTA करने वाला है, जिससे देश के विकास और औद्योगिक जरूरतों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि भारतीय सेना के एक अत्यंत अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वे पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर सुश्री सीतारामन ने

0: कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया अध्याय है। इस अवसर पर भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन भी उपस्थित थे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने कोस्टा रिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कोस्टा रिका के राष्ट्रपति और सरकार को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी और जनसेवा में सफलता की कामना की। श्रीलंका के कंके संथुराई और भारत के नागपट्टिनम के बीच चलने वाली एक यात्री नौका शुक्रवार रात इंजन खराब होने के कारण कई घंटों तक समुद्र में फंसी रही। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नौका दोपहर लगभग 2:30 बजे कंके संथुराई से रवाना हुई थी और उसे लगभग 4 घंटे में नागपट्टिनम पहुंचना था। 144 यात्रियों को ले जा रही ये नौका के इंजन में नागपट्टिनम तट से लगभग 2 समुद्री मील दूर कल्लर के पास खराबी आ गई। भारतीय अधिकारियों और स्थानीय मछुआरों को नौका की सहायता के लिए भेजा गया, जिसके बाद उसे धीरे धीरे बंदरगाह पर वापस लाया गया। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत सहित दक्षिण और मध्य एशिया के देशों को विश्व स्तरीय तकनीक तक पहुंच देना चाहता है ताकि वे विरोधी देशों पर निर्भर न रहे। अमेरिकी विदेश विभाग की उप सहायक सचिव बेथनी मॉरिसन ने अमेरिका भारत एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों फोरम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के तेजी से विकास के साथ स्पष्ट नियम और सुरक्षा जरूरी है। तकनीक का उपयोग खुलेपन, सुरक्षा और आपसी तालमेल के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि एआई क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ रही है और भारत अमेरिका सहयोग से दोनों देशों को वास्तविक फायदे मिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे संघर्ष में अमेरिका ने 10 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर ईरान को घेरने की नई कोशिश की है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के साथ संघर्ष के बाद ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है। यहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस वजह से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तीव्र बढ़ोतरी देखी जा रही है। ईरान बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाने की क्षमता रखता है और हर महीने लगभग 10,000 ड्रोन बना सकता है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव हुर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमेरिका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य हुर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि हुर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। चर्चा में सीमाओं का निर्धारण, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने तथा लेबनान में सरकार की पूर्ण संप्रभुता बहाल करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। दुनिया में हंता वायरस के दो नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं, एक स्पेन में और दूसरा दक्षिण अटलांटिक महासागर के दूरस्थ द्वीप ट्रिस्टन दा कुन्हा में। ये मामले एक लग्जरी क्रूज जहाज से शुरू हुए संक्रमण से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब तक इस वायरस से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि आम लोगों के लिए जोखिम कम है और ये वायरस आसानी से नहीं फैलता। संगठन के अनुसार जहाज पर मिले कुछ मामले हंता वायरस के इंडीज स्ट्रेन से जुड़े हैं, जो इस वायरस का एक ऐसा प्रकार है जो इंसानों के बीच फैल सकता है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के कोंग चियांग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिराट का सामना करेंगे। फुटबॉल में भारत ने कल चीन में लेबनान को 4-0 से हराकर एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारत के लिए प्रतिका बम्मन ने 2, अलवा देवी सिंजाम और जोया ने 1-1 गोल किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना आज से भारत दौरे पर। अमेरिका ने ईरान को हथियार बनाने में सहयोग के आरोप में 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विश्व दर्पण समाचार श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:20 हो रहे हैं। फिल्म संगीत हम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
6: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
5: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
6: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों के आज के सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का पहला गाना हमने लिया फिल्म कॉकटेल से। आवाजें नीरज श्रीधर और कविता सेठ की, बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है प्रीतम ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म दिल चाहता है का ये ट्रैक श्रोताओं अभी आपने सुना शंकर महादेवन शान और के की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और धुन बनाई है शंकर एहसान और लॉय की जोड़ी ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म दिल धड़कने दो का ये ट्रैक श्रोताओं अभी आपने सुना शंकर महादेवन, याचिता शर्मा, मनीष कुमार, फरहान अख्तर और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और धुन बनाई है शंकर एहसान और लोए ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गाना लिया है हमने फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से, आवाजें अली जफर और श्वेता पंडित की।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म कूली नंबर वन का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना नेहा कक्कर, जावेद मोहसिन और देव नेगी की आवाजों में। बोल लिखे हैं दानिश साबरी ने और धुन बनाई है जावेद मोहसिन ने।

0: सुनिधि चौहान और सलीम सुलेमान की आवाज़ों में फिल्म बैंड बाजा बारात का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना, और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त पेका को अनुमति। नमस्कार। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में पहुंच गए हैं। इससे पहले वो एक भव्य रोड शो में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हैं। इससे पहले कल श्री अधिकारी को पार्टी विधायक दल का नेता निर्विरोध चुना गया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईओएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त होगा। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौचीशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। हिंद महासागर संवाद कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रम और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विश्व मामलों के परिषद और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय के सहयोग से इस संवाद का आयोजन किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान

रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिम राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

तुम मिले तो क्यों लगा मुझे खुद से मुलाकात हो गई, कुछ भी तो कहा नहीं मगर जिंदगी से बात हो गई। जी हाँ श्रोताओं, दिन भर हम बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, तो कभी किसी से अचानक हमारी मुलाकात हो जाती है और ऐसे में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना हमें बहुत अच्छा लगता है ना। और सारी जद्दोजहद के बीच हम काम की बातें भी करते हैं, एक दूसरे के साथ समय भी बिताते हैं। फिलहाल इन तमाम चीज़ों के बीच हम भी आप श्रोताओं से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के जरिए। स्वीकार कीजिए गीता का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओ, आज का दिन यानी 9 मई को हम उस महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिन्होंने न केवल भारतीय साहित्य को बल्कि विश्व साहित्य को भी अपनी रचनाओं से समृद्ध किया। जी हाँ श्रोताओ, विश्व साहित्य, कला और संस्कृति के एक अनमोल रत्न गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर आज हम उन्हें नमन कर रहे हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाली कैलेंडर के अनुसार 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। वे एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार, संगीतकार और दार्शनिक थे, लेकिन सबसे बढ़कर एक संवेदनशील इंसान थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में मानवता, प्रकृति और प्रेम को बखूबी उकेरा था। रविंद्रनाथ टैगोर पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें साल 1913 में उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ये कृति उनकी आध्यात्मिक और भावनात्मक गहराई का प्रतीक है जिसने विश्व भर में पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी काव्य कृति गीतांजलि का एक छोटा सा अंश हमें याद आता है। तुमने मुझे अनंत बनाया, यही तुम्हारी इच्छा है। ये नाजुक मिट्टी का प्याला तू बार बार खाली करता है और बार बार ताज़ा जीवन से भर देता है। इन पंक्तियों में गुरुदेव की आध्यात्मिकता और जीवन के प्रति उनकी गहरी समझ झलकती है। साथ ही उनकी लेखनी में प्रकृति और मानव आत्मा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

अमिताभ बच्चन, विशाल शेखर और क्लिंटन सेरेजो की आवाज़ों में कहानी फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना। बता दें श्रोताओं कि गुरुदेव केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक महान संगीतकार भी थे। उन्होंने लगभग 2230 गीतों की रचना की जिन्हें हम रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं, और ये गीत प्रेम, प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनूठा मिश्रण है। साथ ही भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान दोनों ही टैगोर की कालजयी रचनाएँ हैं। इतना ही नहीं श्रोताओं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी योगदान दिया। उन्होंने साल 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना, जहां शिक्षा को प्रकृति के बीच रचनात्मकता और स्वतंत्रता के साथ जोड़ा गया, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक नहीं सीमित है बल्कि ये आत्मा को भी जागृत करने वाली होनी चाहिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची कला और साहित्य समाज को जोड़ने और प्रेरित करने का माध्यम है। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेम, एकता और मानवता का पाठ पढ़ाती हैं, और उनके द्वारा हम सब अपने जीवन को नए नज़रिए से देखने की प्रेरणा पा सकते हैं। एक बार फिर उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और आपको सुनवाते हैं लेकिन फिल्म का वो गाना। और ये फिल्म जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की लघु कहानी क्षुधित पाषाण यानी भूखा पत्थर का हिंदी रूपांतरण है, जिसे निर्देशित किया था गुलजार ने। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

श्रोताओं, आज के दिन की बात करें तो आज यानी 9 मई को हम मना रहे हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और ये दिन उन लाखों पक्षियों को समर्पित है जो हर साल हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक यात्रा करते हैं। ये प्रवासी पक्षी भोजन, मौसम और प्रजनन के लिए लंबी यात्राएं करते हैं। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में वर्ष 2006 से हुई थी, यानी आज के दिन की शुरुआत। और ये दिन साल में दो बार मनाया जाता है, मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। और हर साल इस दिवस को एक अलग विषय के साथ मनाया जाता है। इस साल 2026 का विषय है, हर पक्षी मायने रखता है, आपकी निगरानी महत्वपूर्ण है। साथ ही ये विषय समुदाय विज्ञान पर केंद्रित है, अर्थात आम नागरिक जो है ना, छात्र, पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी मोबाइल ऐप्स के माध्यम से पक्षियों की गिनती, उनकी प्रजातियों और उनके आवास की जानकारी इकट्ठा करके संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। आज के दिन हमारा यही कर्तव्य बनता है श्रोताओं कि हम पक्षी अनुकूल शहर बनाएं, पेड़ लगाएं, जल स्रोत बनाएं, रोशनी कम करें, खासकर रात में माइग्रेशन के समय जंगलों की रक्षा करें और बच्चों को पक्षियों के बारे में शिक्षित करें। श्रोताओं, ये छोटे छोटे रंग बिरंगे मेहमान हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति की रक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। और जब ये पक्षी हमारे यहाँ आते हैं तो हमें संदेश देते हैं, सीमाएं पार करो, एकता बनाए रखो और पर्यावरण बचाए रखो।

0: रिफ्यूजी फिल्म का ये गाना था सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। जावेद अख्तर थे गीतकार और संगीतकार थे अनु मलिक।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल हुआ पूरा और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। आज के कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त गीता। श्रोताओं, आज के दिन की हम बात कर रहे हैं तो आज का दिन एक और रूप से हमारे लिए मजेदार और रचनात्मक है। जी हाँ, आज है नेशनल अल्फाबेट मैग्नेट डे, यानी राष्ट्रीय वर्णमाला चुंबक दिवस। श्रोताओं, आज का दिन उन रंग बिरंगे चुंबकीय अक्षरों को समर्पित है जो हमारे फ्रिज के दरवाजों पर चिपके रहते हैं। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के जो अक्षर है ना, वो बच्चों को पढ़ने लिखने का मजा सिखाते हैं और बड़े भी इनके साथ शब्द बनाकर अपनी रचनात्मकता को दिखलाते हैं। साल 2022 में अमेरिका की द टाइप सेट नामक कंपनी ने इस दिन की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य उन क्लासिक खिलौनों को याद करना है जो दशकों से बच्चों की पढ़ाई को खेल बनाते आ रहे हैं। आज ये दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। बता दें श्रोताओं कि ये रंग बिरंगे अक्षर होते हैं, ये खेल खेल में वर्णमाला हमें सिखा जाते हैं, शब्द बनाना सिखाते हैं, स्पेलिंग सुधारते हैं और रचनात्मक सोच को विकसित करते हैं। इस तरह से आज का दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा को बोझ नहीं बल्कि खेल और आनंद बनाया जा सकता है। छोटे छोटे अक्षर मिलकर बड़े बड़े शब्द, वाक्य और विचार बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे छोटे छोटे प्रयास बड़े बड़े सपनों को साकार बनाते हैं।

हम साथ साथ हैं इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, हरिहरन, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। गीत देव कोहली ने लिखा और धुन बनाई राम लक्ष्मण ने। और अब श्रोताओं, भारतीय इतिहास के तहत आज की तारीख 9 मई की चर्चा, जिसमें जिसने हमें कई यादगार पन्ने दिए हैं। हम याद कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण के युग पुरुष गोपाल कृष्ण गोखले जी को, जो आज ही के दिन 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जन्मे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, समाज सुधारक और शिक्षाविद गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और कहा था कि राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, न कि सत्ता का। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है, शिक्षा, नैतिकता और लोक सेवा। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन कर रहे हैं। और अब बात 9 मई साल 1546

1940 के इस दिन मेवाड़ की धरती पर जन्मे थे महाराणा प्रताप, एक ऐसे राजा जिसने कभी मुगल साम्राज्य के सामने सिर नहीं झुकाया। अकबर की विशाल सेना के सामने भी उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और अपनी स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा। उनका घोड़ा चेतक आज भी वफादारी और बहादुरी का प्रतीक है। उनका कहना था, आत्मसम्मान और स्वाभिमान कभी समझौता नहीं करता। साथ ही उन्होंने सिखाया कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, मातृभूमि के लिए लड़ना हर सच्चे भारतीय का धर्म है। आज उनकी जयंती पर भी हम उन्हें नमन करते हैं।

महाराणा प्रताप फिल्म का ये गाना था रूप कुमार राठौर की आवाज में। आज के दिन के इतिहास की हम चर्चा कर रहे हैं श्रोताओं, तो आज ही के दिन साल 1874 में मुंबई में पहली घोड़े से खींचने वाली बस यानी ट्राम शुरुआत हुई थी आज के दिन, जो आधुनिक परिवहन व्यवस्था की शुरुआत थी। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा के प्रणेता दुर्गाबाई देशमुख का निधन आज ही के दिन हुआ। उन्होंने स्त्री शिक्षा और सामाजिक सुधार में अमूल्य योगदान दिया था। साथ ही आज ही के दिन साल 1953 को मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। श्रोताओं, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनाई गई ये इमारत आज पूरी दुनिया के साथ अजूबों में शुमार है। सफ़ेद संगमरमर में उकेरी गई नक्काशी प्यार की कहानी और मुगल वास्तुकला का शानदार नमूना है ताजमहल। ये हमें याद दिलाता है कि भारत में प्रेम कला और स्थापत्य की परंपरा सदियों पुरानी है। हम ये कह सकते हैं कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि समर्पण और सौंदर्य का जीवंत प्रमाण है। एक गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं जो ताजमहल फिल्म का है और ये ताजमहल में ही शूटिंग के दौरान यहाँ की तस्वीरों को लिया गया है। तो आइए सुनते हैं ताजमहल फिल्म का ये गाना।

ताजमहल फिल्म का ये गाना था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। साहिर ने गीत लिखा और धुन बनाई रोशन ने। और श्रोता, अब बात आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और जागरूकता फैलाने के एक महत्वपूर्ण अभियान के बारे में, क्योंकि इस सप्ताह जो है गत 4 मई से आगामी 10 मई यानी कल के दिन 2026 तक पूरे भारत में मनाया जा रहा है अग्नि सुरक्षा सप्ताह। और ये मुख्य रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा से अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य आग के खतरों की रोकथाम, शमन और तैयारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, खासकर अस्पतालों, स्कूलों और समुदाय में सुरक्षित वातावरण बनाने पर जोर देना है। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं श्रोताओं, जो कि हम अनेक अग्नि सुरक्षा के रूप में हम अपने जीवन में हम पालन कर सकते हैं, जैसे कि विद्युत उपकरणों का हमें सही रखरखाव करना है, पुरानी वायरिंग जो ना छोड़े उसके लिए भी ध्यान रखना है, और रसोई में गैस सिलेंडर सावधानी से इस्तेमाल करें, आग बुझाने के लिए रज़ाई या कम्बल का उपयोग करें ना कि पानी, और धूम्रपान से बचें, बच्चों को आग के खतरों के बारे में बताएं, और बहुमंजिला इमारतों में फायर एस्केप रूट और सीढ़ियां साफ रखें और नियमित रूप से ड्रिल का अभ्यास करें। श्रोताओं, अग्नि सुरक्षा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

अमित कुमार की आवाज़ में तेरी कसम फिल्म का ये गाना था। आनंद बख्शी थे गीतकार और संगीतकार थे आर डी बर्मन। और श्रोताओं, अब बात मनोरंजन जगत की। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान नायक गायक की जिनकी आवाज़ मीठी, मखमली और दिल को छू लेने वाली थी। जी हाँ, वे हैं तलत महमूद। उन्हें किंग ऑफ गज़ल्स, शहंशाह ए गज़ल, वेलवेट वॉइस ऑफ इंडिया और मैन विद गोल्डन वॉइस जैसे खिताबों से नवाजा गया था। उनका जन्म 24 फरवरी 1924 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता एक गांधीवादी और कला प्रेमी थे। घर में संगीत और उर्दू शायरी का माहौल था और तलत साहब छोटी उम्र से ही संगीत के दीवाने थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत की महफिलों में जाया करते थे और बड़े गायकों को बड़े गौर से सुना करते थे। 16 साल की उम्र में साल 1939 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से गजलें गाना शुरू किया और फिर साल 1949 में वे मुंबई आ गए और हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगर के रूप में छा गए और उन्होंने 1950 के दशक में लगभग 750 गाने गाए। वे अभिनेता भी थे और कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। साल 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। आज ही के दिन साल 1998 में 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में सुजाता फिल्म का ये गाना।

और श्रोताओं, चलते चलते अब मौसम का हाल बताते चले। शहर का मौसम जो है लगातार बदल रहा है, और इस बीच अधिकतम तापमान आज 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद बारिश की संभावना जताई गई है। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करिते छी जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पोचिशे वैशाख गुरुदिन रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की 2री राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार

0: से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। भावगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम भावगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा देश ऋतुओं की रंगस्थली है। वर्ष के 12 महीने यहाँ की माटी अपनी नित नूतन छवियों का 12 मासा गाती है। वैसे मौसम चाहे जो भी हो, प्रकृति का दीदार करना हमें बहुत सुकून देता है। प्रकृति के नज़ारे देखने से मन पर सकारात्मक असर पड़ता है। आज कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही गीत आपके लिए, जिसमें है हसीन वादियाँ, सेहरन पैदा करने वाली हवा, शहर के शोरगुल से दूर पहाड़ों की नायाब दुनिया, वहाँ के भोले भाले लोग, वहाँ की बस्तियाँ, हरियाली, दुधिया झरने, कल कल बहती नदियाँ, जो मन को लुभा जाती हैं और एहसास दिलाती हैं जैसे प्रकृति बाहें फैलाए हमें अपनी ओर बुला रही हैं।

स्वतः प्रकृति अपने आगोश में कई खूबसूरत इलाकों को समेटे हुई है, जिसमें अनगिनत कुदरती सौगातों के साथ साथ हमें मिलती है लोक रंग और ग्रामीण संस्कृति की नायाब झलक। वहाँ के लोक गीत कानों में रस घोलते हैं, साथ ही कुदरत के सजीले रंगों के साथ साथ वहाँ की रंगारंग संस्कृति, उत्सव और मेलों का हम लुत्फ भी उठाते हैं और प्रकृति की सुंदरता में डूब जाने का मन करता है।

श्रोताओं, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की सुंदरता के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसकी सुंदरता पूरे विश्व में विख्यात है। गर्मी के मौसम में सर्दी का मज़ा लेना हो, या पहाड़ों की धूप का आनंद, या फिर बर्फबारी के मज़े, ये सब मज़े हमें मिलते हैं कश्मीर में प्रकृति की गोद में जा कर के। वहाँ की वादियों में कालीन की तरह बिछी घास और बर्फ में लिपटे पहाड़ हमारा मन मोह लेते हैं। हवाओं के साथ हिलते वृक्ष स्वागत में बाहें पसारे प्रतीत होते हैं।

ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, वादियों से घिरा प्रकृति का मनोरम दृश्य हमारे मन में एक अलग एहसास जगा जाता है। श्रोताओं, जहाँ भी हम नज़र घुमाएं, वहीं प्रकृति की खूबसूरती एक नए नज़रिए से हमें देखने को मिलती है। प्रकृति की हर पारिस्थितिक तंत्र अपनी अपनी खूबसूरती लिए होता है, जिसका अनुभव भी सबसे अलग और खूबसूरत होता है।

होता है। साथ ही पहाड़ों और जंगलों के बीच कल कल ध्वनि से बहती नदियों का संगीत वहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देता है।

श्रोता कहते हैं कि प्रकृति का दीदार करना बहुत सुकून देता है। ऐसा करने से मन में चल रही उथल पुथल कम होती है, मन शांत होता है और प्रकृति से हमारे मन के तार आसानी से जुड़ जाते हैं और ज़िंदगी में चल रही तमाम परेशानियों से हमारा दिमाग हटकर कुछ देर के लिए कहीं और केंद्रित हो जाता है। आज के भावगीत कार्यक्रम के जरिए प्रकृति के गोद में पहुँच कर हम हसीन नज़ारों का आनंद ले रहे थे। आज के कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीतों को आपने सुना वे थे राम तेरी गंगा मैली, आज और कल, प्यासा सावन और गुमराह। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। गीत लिखा रविंद्र जैन, साहिर और संतोष आनंद ने और संगीत तैयार किया रविंद्र जैन, रवि और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी के साथ आज का भावगीत कार्यक्रम बस यहीं संपन्न हुआ।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।

बहनों, पक्षियों का होना प्रकृति की बहुत सारी चीजों का होना और बचे रहना है। ये पक्षियों का होना ही बताता है कि पर्याप्त प्रेम के साथ साथ अपने भीतर सत्य और शक्ति को महसूस करना क्या होता है। यूं तो हम हर दिन सुबह जगते हैं मोबाइल में लगे अलार्म से, पर पक्षियों की चहचहाहट को सुनकर आंखें खोलना कितना अच्छा लगता है। कल्पना कीजिए उस भोर की जब चिड़ियों की ची ची सुनकर खुले हम सबों की नींद, हमारे बिखराए हुए चावल के दाने को चुगने के लिए जब पक्षी झुंड बनाकर आते हैं, गोरैया और कबूतर हमारी बालकनी और आंगन में दाना चुगते हैं, तो फिर ये दृश्य हमें भोर के सौंदर्य से हमारा परिचय कराता है। कार्यक्रम अंगना सुनने वाली सभी बहनों को नमस्कार, जोहार। बहनों, आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति की एक खूबसूरत देन और जीवों में बहुत ही सुंदर दिखने वाले पक्षियों की। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी है और इसी बहाने हम बात करें उन पक्षियों की जिनका होना प्रकृति का होना है। बहनों, कहते हैं कि प्रकृति के अलार्म होते हैं पंछी, ये जगते हैं तो ये सारा जग जगता है। दाने चुन चुन कर लाना और अपने बच्चे को खिलाना हमें ये सिखाता है कि परिश्रम से ही सब संभव है। पक्षियों का चहचहाना एक मधुर संगीत है जिसकी रचना स्वयं ईश्वर ने की है। पक्षियों को उड़ता देखकर ही तो हमारे पूर्वज में कोई प्रेरित हुए होंगे वायुयान के आविष्कार के लिए। खेत, खेती, फसल और कई सारे प्राकृतिक कार्यों में पक्षियों की सहभागिता, उनकी उपस्थिति जरूरी है। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर यह समझें हम कि हर पक्षी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो क्यों ना हम पक्षियों को बचाएं, इस गर्मी के मौसम में भी उनके लिए दाना रखें, उनके लिए अपनी बालकनी में जल रखें। बहनों, प्रकृति को बचाएं, इन पक्षियों को बचाएं, इनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए और इस सुंदर प्रकृति के लिए, धरती माता के लिए।

बहनों, ये दौर महिलाओं की स्वतंत्रता की वकालत करता है। महिला सशक्तिकरण की बातें हम सभी करते हैं और इसी क्रम में अकेले गाड़ी चलाना भी महिलाओं के लिए एक आज़ादी भरा अनुभव कहा जाता है। पर जरूरी है बहनों कि हम वाहन चलाते समय सुरक्षित रहें। यात्रा छोटी दूरी की हो या लंबी, अकेले गाड़ी चलाने वाली महिलाओं के लिए जरूरी है कि हम संभावित जोखिमों से बच कर रहें। जब भी हम घर से निकलें तो अकेले गाड़ी चलाने के पहले अपना लक्ष्य तय कर लें कि हमें कहाँ जाना है। हम रूट प्लान पर कोई दुविधा न रखें। जानकारी के लिए GPS ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में अनजान या सुनसान रास्तों से बचें। अगर आप किसी नई जगह जा रहे हैं तो जरूर उस इलाके की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं। गाड़ी चलाते समय यह भी ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी सही स्थिति में हो, उसकी नियमित सर्विसिंग कराएं, टायर प्रेशर, ब्रेक की क्षमता और इंजन ऑयल लेवल, ये सारी चीजों को भी ध्यान दें। ईंधन टैंक को हमेशा कम से कम आधा भरा रखना भी एक समझदारी भरा कदम है। इससे कभी भी गाड़ी अचानक खराब होने की स्थिति में नहीं होगी। पंचर टायर बदलना और कार की छोटी छोटी समस्याओं को जानना भी जरूरी है। आपातकालीन स्थिति के लिए अपनी गाड़ी में एक टूल किट जरूर रखें। वाहन संबंधी समस्याओं को ठीक करने में अगर कोई संदेह है तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक छोटा कोर्स भी जरूर करें। जब भी आप वाहन चलाएं, हमेशा दरवाजे बंद रखें, खिड़कियां भी बंद रखें। सुनसान इलाकों में कभी ना रुकें। जब भी रुकना हो तो

बहनों, आज 9 मई है विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। टैगोर के जीवन दर्शन और उनके शैक्षणिक व्याख्यान आज भी स्कूलों में, कॉलेज में, करिकुलम में शामिल हैं। इन्होंने हमेशा आत्म प्रेम, कर्म और सौंदर्य के बारे में बताया है। टैगोर की पुस्तकों को और उनके विचारधाराओं को अगर हम जाने तो ये हमेशा प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बीच संतुलन को स्थापित करने की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच सदियों से एक मजबूत संबंध रहा है और ये संबंध जब असंतुलित होता है तभी हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं आती हैं। जब हम पर्यावरण, जंगल और धरती की परवाह नहीं करते हैं तभी हमारे जीवन की शांति भंग होती है। ये प्रगति के सर्वोत्तम साधन के रूप में प्रकृति और खुले वातावरण में जीवन बिताने की वकालत करते हैं। उनका कहना था कि मनुष्य को बाधाओं को पार करके मनुष्य से बढ़कर बनना होगा और अपने चेतना की स्वतंत्रता को महसूस करना होगा। जीवन का मतलब ही स्वयं को जानना है और आसपास के संसार को समझना है। टैगोर के अनुसार परिवार वही है जहां माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करें। इसलिए मनुष्य को अपनी आत्मा को अपने अहंकार से अलग रखकर प्रेम, स्नेह, सहानुभूति के साथ प्रकृति से सामंजस्य बिठाते हुए अपने जीवन को गतिशील रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति और इतनी मजबूती होनी चाहिए कि वो अपने जीवन की यात्राओं और संघर्ष के अनुभवों को अकेले बिता सके और आगे बढ़ सके। आज भी हम जीवन के कई सारे ऐसे अनुभवों में अगर विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के दिए गए संदेश को याद रखें तो हमारे जीवन की राह सहज सरल हो जाएगी।

0: बहनों आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले चरण में एक वार्ता। सड़क हादसों का कारण बन सकता है सड़क सम्मोहन, इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर प्रमिला पूर्ति। बहनों सड़कों पर यात्राएं करना आज हमारे जीवन का एक दैनिक क्रियाकलाप सा बन गया है। जरूरतों को पूरा करने, नौकरी, व्यवसाय और घूमने के सिलसिले में भी हम लोग सड़कों पर तो जाते ही हैं और छोटी बड़ी यात्राएं भी करते हैं। पर यह दुखद है बहनों कि अक्सर यात्रा के दौरान दुर्घटनाएं भी हो जाया करती हैं और इससे कभी कभी एक पूरा परिवार बिखर जाता है। गाड़ी चलाते समय ध्यान के बट जाने या सड़क हादसों के पीछे हाईवे हिप्नोटिज्म यानी सड़क सम्मोहन भी एक कारण होता है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आकाशवाणी जमशेदपुर की स्टूडियो में आई हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर प्रमिला पूर्ति जी। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो मैडम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सड़क सम्मोहन का मतलब क्या है।
1: सड़क सम्मोहन जिसे हम लोग इंग्लिश में हाईवे हिप्नोटिज्म या व्हाइट लाइन फीवर भी कहते हैं
0: जी,
1: ये तब होता है जैसे हम लोग एक रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे हम लोग डेली ट्रैवल कर रहे हैं, डेली जा रहे हैं, एक सीधा रास्ता है, कहीं टर्न नहीं है, कहीं बेंड्स नहीं है और उस रास्ते में हम लोग लंबे समय तक ड्राइव कर रहे होते हैं
0: जी।
1: तो उस समय जो है यूजुअली हमारा जो है कम्प्लीटली हम लोग कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन जब ये सम्मोहन वाली स्थिति जब होती है तब हमारा जो ये अवेयरनेस है पूरी तरह से सचेत नहीं रहता है। हमारे हाथ और हमारे पांव सही कोऑर्डिनेशन में, ब्रेक में, स्टीयरिंग व्हील में काम तो कर रहे हैं, बट जो हमारा दिमाग है वो पूरी तरह से सचेत नहीं रहता है। उस समय हो सकता है कि हमारे मन में कोई विचार आ रहे हों, इसी वजह से ये जो पीरियड है इसका हमें कोई याददाश्त नहीं रहता है। गाड़ी चलाना कला है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, मतलब ये टास्क जो हम लोग डेली कर रहे हैं तो ये सबकॉन्शियसली भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे जो रेगुलर गाड़ी चलाते हैं उन्हें गियर चेंज करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, ब्रेक है तो ऑटोमेटिक वो हो जाता है, अब पूरी तरह अलर्ट नहीं भी होंगे तो भी वो चला लेंगे तो लकीली वो अपने डेस्टिनेशन में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद उन्हें जब भी होश आता है तब लगता है कि अरे हम कहाँ थे, हम कैसे पहुंच गए, इतनी दूरी कैसे ट्रैवल कर लिए, वो क्षण भर का समय जो है वो याद नहीं रहता है। इस बीच अगर किस्मत खराब रही और रास्ते में कुछ आ गया या किसी ने हॉर्न दे दिया तब फिर हम लोग जो है वो कॉन्शियस स्टेट में आते हैं और अगर सही समय पे हम लोग रिएक्ट ना करें तब ये एक्सीडेंट का कारण बन जाता है।
0: तो मैडम ये जो सड़क सम्मोहन की स्थिति है हाईवे हिप्नोटिज्म, इसका कारण क्या है?
1: जैसे कोई लंबे जर्नी में गए हैं या कोई ऐसा रास्ता लिए हैं जो यूजुअल रोड है, मतलब हर दिन उसी रोड पे चलते हैं
0: जी,
1: तब होता है, या एकदम ही सीधा रास्ता है, कहीं बेंड्स नहीं है, तब होता है। और मान लीजिए थके हुए हैं, एक दिन पहले आपको अच्छी नींद नहीं आई है, आराम नहीं हो पाया है, वैसी स्थिति में भी सम्मोहन वाली स्थिति हो सकती है। और व्हाइट लाइन फीवर जो है वो उसी वजह से कहा जाता है, जैसे सड़कों के किनारों पे जो वो व्हाइट लाइंस जो बने रहते हैं
0: जी,
1: तो उसको अगर कॉन्स्टेंटली हम लोग देखते रहें तो एक वो सम्मोहन वाली स्थिति में पहुंच जाता है, हमारा दिमाग जो है वो अवचेतना वाली स्थिति में चला जाता है, इसीलिए इसे व्हाइट लाइन फीवर भी कहते हैं।
0: तो हम कह सकते हैं कि जब एक रास्ता वाली मनोभावना होती है तो सम्मोहन वाली भी स्थिति आ जाती है। तो जरूरी है कि वाहन चलाते समय जो ड्राइवर है वो सक्रिय रहे, उसका जो मन है, दिमाग है, वो सजग अवस्था में रहे, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: ये जनरली जब ड्राइविंग कोई शुरू करते हैं
0: जी,
1: तो 2 से 2.5 घंटे के बाद ऐसी स्थिति आती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप 2 से 2.5 घंटे में आपको एक ब्रेक जरूर लेना चाहिए। ब्रेक में आप चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं तो गाड़ी एक साइड में आप रोक दीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए, आराम कीजिए, इसके बाद फिर आप अपने जर्नी में जाइए। जैसे सम्मोहन वाली स्थिति बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन कभी भी अगर आपके मन में आए, अचानक से ये ख्याल आए कि अरे मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, तब आप समझिए कि आप ये हिप्नोटिज्म वाली स्थिति में थे, आप अपनी गाड़ी रोकिए, आराम कीजिए, फ्रेश होइए और उसके बाद फिर अपना जर्नी कंटिन्यू कीजिए।
0: ये जो सड़क सम्मोहन वाली बात है मैम, मुझे लगता है कि बहुत ही नई अवधारणा है, नया विषय है, सभी लोग इस विषय में सजग नहीं है, तो गाड़ी चलाते समय जो ड्राइवर है उनको इस विषय के प्रति कैसे जागरूक जागरूक किया जा सकता है?
1: देखिए, धड़क सम्मोहन वाली स्थिति में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक्सीडेंट जो है सड़क सम्मोहन प्लस एक ड्राउजी स्टेट, मतलब वो निद्रा वाली स्थिति, ये दोनों जब साथ में होती है तब एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यही सलाह देना चाहेंगे कि जब भी आप कोई लंबी जर्नी पे आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसके एक दिन पहले आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। आप अपना जर्नी अच्छे से प्लान करके कीजिए और 2 से 2.5 घंटे में आप ब्रेक लीजिए। ना अधिक हो सके आप पानी का सेवन करें, कुछ एनर्जेटिक म्यूजिक सुन सकते हैं, और रोड पे जब आप गाड़ी चला रहे हो तो रियर व्यू मिरर में भी आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आगे ही फोकस किए हैं, ठीक है वो रोड जाना पहचाना है, रियर व्यू मिरर देखिए, दाएं बाएं देखिए, तभी आप अलर्ट रह पाएंगे।
0: तो हमेशा मतलब आसपास में भी आपकी दृष्टि होनी चाहिए।
1: जी, आपके साथ कोई को पैसेंजर है और अन्य लोग भी बैठे हैं तो उनसे भी आप ये कह सकते हैं कि आप रास्ते में आप बात करते जाएं।
0: कभी कभी शौकिया भी लोग ड्राइविंग करते हैं और जब शौकिया करते हैं तो बहुत ज्यादा वो यातायात के नियम और गाड़ी चलाने के नियम पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को किस तरह से हम सजग बना सकते हैं?
1: शौकिया ड्राइवर्स को अब उन्हें अपने शौक तो पूरा करना है, बट सबसे पहली चीज जो है उन्हें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना है। जब वो रोड पे अपने शौक पूरा करने निकलते हैं तो उस रोड में वो अकेले नहीं है, और भी लोग चल रहे हैं, तो आपको उन लोगों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। और ऐसा ना हो आपकी गलती के कारण किसी और को या खुद आपको कोई नुकसान सहना पड़े।
0: ड्राइविंग करते समय भोजन किस तरह से उस वक्त होना चाहिए?
1: गाड़ी चलाने के आधे या एक घंटे पहले आप हो सके तो कम से कम भोजन लें, ताकि वो निद्रा वाली स्थिति ना आए।
0: पूरी तरह से हमारा ध्यान सड़क पे हो, यात्रा पे हो, वाहन चलाने पे हो, और हम अनावश्यक कहीं भी ना सोचें, इसके लिए हम किसी युवा बच्चे को क्या सलाह देंगे?
1: कुछ सेफ्टी रूल्स है, कुछ सावधानियां है जो हर किसी को पालन करना चाहिए। जब भी हम लोग एक गाड़ी चलाते हैं हमें एक रक्षात्मक मोड, मतलब एक डिफेंसिव मोड में ही गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि आपके सामने जो चला रहा है या आपके बगल में जो चला रहा है उसके ड्राइविंग स्किल्स कैसे हैं, वो इंसान कैसा है, आप उसको नहीं जानते हैं। सिर्फ आप अपने ड्राइविंग पे फोकस कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको ये सोच के चलाना है कि मुझे अपनी गाड़ी को संभाल के डिफेंसिव मोड में, रक्षात्मक मोड में ड्राइव करनी है।
0: जब महिलाएं या बालिकाएं गाड़ी चलाती हैं तो उनके लिए कोई विशेष सलाह आप देना चाहेंगी?
1: महिलाओं के लिए जनरली जैसे देखा गया है उनका दुपट्टा, साड़ी वगैरह जो है, सीट में बैठने से पहले आप ये जरूर ध्यान दें कि साड़ी और दुपट्टा जो है वो आप अपने पास ही समेट के रखें, ऐसा ना हो कि वो टायर जो है वाहन के टायर में फंस।
0: अभी जब हम बात कर रहे थे सड़क सम्मोहन की, तो ये क्या किसी विशेष आयु वर्ग के लोगों से संबंधित है या सिर्फ युवा में होता है या सिर्फ प्रौढ़ावस्था में होता है? क्योंकि कई बार बड़ी उम्र के लोग भी लंबी दूरी तक यात्राएं करते हैं, तो सड़क सम्मोहन अलग अलग आयु वाले लोगों को किस तरह से टच करता है?
1: ये किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है। ये जनरली जो स्किल्ड ड्राइवर है, जो रेगुलर वाहन चलाते हैं, उन लोगों में ये अधिक होता है, क्योंकि जो नौ सिखिया जो होते हैं वो अलर्ट रहते हैं, लेकिन जो स्किल्ड है वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो कह लीजिए मतलब
0: बहुत सीरियस नहीं लेते हैं ड्राइविंग,
1: अलर्ट नहीं भी होके वो गाड़ी चला लेंगे,
0: उन्हें लगता है कि ये तो उनके लिए बाएं हाथ का काम है, वो हल्का काम है, और उसी में दुर्घटना जगह बना लेती
1: है। तो इसीलिए एज से ज्यादा ये मैटर करता है कि वो कितना स्किल्ड है, तो ये किसी भी एज में हो सकता है। और कुछ चीजें हैं जो इस चीज को और बढ़ाती है, नशा करने के बाद अगर गाड़ी चला रहे हैं तब हो सकता है, पूरी तरह से नींद नहीं हुई है तब चला रहे हैं, या थके कान वाली स्थिति में गाड़ी चला रहे हैं तब सम्मोहन वाली स्थिति पैदा हो जाती है।
0: अगर लगता है कि हम सालों से गाड़ी चला रहे हैं तो मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता और मैं बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंट जब हो जाते हैं लोग इस विषय में, तब सड़क सम्मोहन वाली स्थिति होती है और दुर्घटना भी घटती है। तो आपने सचमुच एक बहुत ही नए विषय पर हमारा ध्यान इंगित किया है, आकर्षित किया है। अपनी तरफ से आप हमारे आकाशवाणी की महिलाओं को जो सुन रही हैं, जिनके परिवार में बच्चे हैं, युवा हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी मैम आप?
1: देखिए गाड़ी आप दो पहिया वाहन या फिर आप चार पहिया वाहन जो भी चलाएं, पूरे ध्यान पूर्वक चलाएं, पूरे कंप्लीट अलर्ट होकर चलाएं और रोड पर आप जाएं तो एक रक्षात्मक मोड में ही आप गाड़ी चलाएं और नशे से बचें।
0: मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सड़क सम्मोहन जैसे बहुत ही हम कहेंगे कि बहुत ही प्रकाश में विषय नहीं है, लोग समझ नहीं पाएंगे, पर एक बहुत ही अनछुए विषय को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबों के सामने रखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी महिला बहनें जो सुन रही हैं उन्हें भी इस जानकारी से बहुत लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: सड़क हादसों का कारण बन सकता है सड़क सम्मोहन। बहनों अभी आप सुन रही थी ये वार्ता, वार्ताकार थी डॉक्टर प्रमिला पूर्ति। और बहनों इसी के साथ कार्यक्रम अंगना से अपनी रेडियो सखी कल्याणी को दीजिए विदा। हम फिर मिलेंगे और करेंगे घर आंगन की बातचीत। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।
2: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को अभी आप सुन रहे हैं।

पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने बनाई 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी। भोजपुरी, मगही और अंगिका पर जल्द होगा फैसला। प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह शांत करने की कवायद तेज। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और पूर्व सांसद धीरज साहू ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से की लंबी चर्चा। पेयजल आपूर्ति में लापरवाही पर एजेंसियों का टेंडर होगा रद्द। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सभी निकायों को दिए निर्देश। और रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कोडरमा के सतगावा में वज्रपात से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बंगला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल R.N. रवि ने शुभेंदु के अलावा 4 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्र पाल, अशोक कीर्तनिया और निशित प्रमाणिक के नाम शामिल हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार ने विसंगतियों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार को शामिल किया गया है। झारखंड की राजनीति में गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान के बीच विधायक सरयू राय के बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी है। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव दिया है कि वे कांग्रेस माइनस सरकार बनाने पर विचार करें। उन्होंने तर्क दिया कि इससे सरकार की कार्यप्रणाली और छवि में सुधार हो सकता है।
1: मैंने उनसे जिक्र किया कि सुना है कि आप भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं। उन्होंने इनकार किया और कहा कि मीडिया में कई तरह से बातें आ जाती हैं। मैंने कहा कि एक विकल्प उन्होंने भी सुझाया है, विचार करें। उन्होंने कहा कि अभी तो जैसा स्थिति जैसी है वही बढ़िया से चले, हम सभी की कोशिश है।
0: हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि फिलहाल राज्य सरकार में किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में गठबंधन पूरी तरह एकजुट है।
2: सलाह मानने वाला व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मुफ्त की सलाह ठीक नहीं होती, या सलाह कोई दिया है उसको अभी रिजर्व रखते हुए काम करना है। हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं और जिस बात को लेकर सरकार बनी है वो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को केंद्रीय बिंदु में रख के सरकार बनी।
0: कानून व्यवस्था के सवाल पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सत्ताधारी दल झामुमो ने स्पष्ट किया है कि हेमंत सरकार अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं देती है और कानून अपना काम पूरी सख्ती से कर रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश ठाकुर ने कुख्यात अपराधी प्रिंस खान की सक्रियता पर कहा कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
3: झारखंड में जीरो टॉलरेंस की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार है, ये बहुत दिन तक ऐसे अपराधी बच नहीं पाएंगे और जब पुलिस के शिकंजे में आएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे निकलेगी। ये अपराधियों को संरक्षण देना तो ये भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में होगा, ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों में होगा। अब इतना दिन नहीं खराब आ गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इंडिया गठबंधन का कि अपराधियों को संरक्षण दे।
0: झारखंड कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को शांत करने की कवायद तेज हो गई है। पूर्व सांसद धीरज साहू और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कल रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पार्टी के कुछ फैसलों से वे आहत जरूर हैं, लेकिन संगठन के हित में 18 मई तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी बात पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू के समक्ष विस्तार से रखेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिनों तक चलने वाले इस उच्च स्तरीय शैक्षणिक समागम में देश के लगभग 200 प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ और सैन्य क्षेत्र के डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन आर्मी हॉस्पिटल और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी नगर निकायों को गर्मी के दौरान निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में

0: उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी की आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को न केवल दंडित किया जाएगा बल्कि उनका अनुबंध भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बैठक में जल मीनारों की मरम्मत, होल्डिंग टैक्स वसूली और बस स्टैंडों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने शहरों में कचरा उठाव और साफ सफाई की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए सामुदायिक भवनों के निर्माण में तेजी लाने को कहा। लौह नगरी जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की तीन गाड़ियां बरामद की हैं। एएसपी ऋषभ त्रिवेदी ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह गिरोह सुनसान जगहों पर गाड़ियों के पार्ट्स अलग कर उन्हें बेचने का धंधा करता था।
1: तो मुख्य अभियुक्त चार पकड़े गए, हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। चोरी करके ये लोग गाड़ी का पुर्जा तोड़ते थे कि गाड़ी का वो कभी हैंडल निकालेंगे, कभी पहिया निकालेंगे। यही हम लोगों ने जब उनसे कड़ी पूछताछ की तो यह पता चला कि वो गाड़ी के जो पुर्जे निकालते थे उसको कई सारे पुर्जों में बेचा जाता है।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,40,500 रुपए है जबकि चांदी की कीमत 2,64,000 रुपए प्रति किलो है। कोडरमा के सतगावा में कल देर रात वज्रपात से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। लोहे की खिड़की के जरिए बिजली के कमरे के अंदर गिर जाने से यह हादसा हुआ। इधर मौसम विभाग ने आज रांची, हजारीबाग और बोकारो समेत 5 जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने बनाई 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी, भोजपुरी, मगही और अंगिका पर जल्द होगा फैसला। प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह शांत करने की कवायद तेज, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और पूर्व सांसद धीरज साहू ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से की लंबी चर्चा। पेयजल आपूर्ति में लापरवाही पर एजेंसियों का टेंडर होगा रद्द, नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सभी निकायों को दिए निर्देश। और रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कोडरमा के सतगावा में वज्रपात से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी रांची से प्रसारित समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:20 और 40 सेकंड हुए हैं और आप इस समय सुन रहे हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
4: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
3: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
5: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।

आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गाना रब्बी शेरगिल की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं। गुलजार हैं गीतकार, संगीतकार ए आर रहमान और फिल्म का नाम है जब तक है जान।

साधना सरगम उदित नारायण और शंकर महादेवन की आवाज़ों में, जावेद अख्तर का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था क्यों हो गया ना।

कुर्बान फिल्म का ये गाना था सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट की आवाज़ों में। गीत लिखा निरंजन अयंगर ने और धुन बनाई सलीम सुलेमान ने।

FM 102.4 GHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हेलो डॉक्टर,
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
3: हेलो डॉक्टर,
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
3: हेलो डॉक्टर,
5: जलवायु साझेदारी, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। जिन देशों से ज्यादा प्रदूषण होता है उन्हें आगे बढ़कर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और गरीब और कमजोर देशों को पैसा, तकनीक और जरूरी मदद देनी चाहिए। UNFCCC जैसे ढांचों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में यूनाइटेड नेशंस एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब वादा करने का नहीं, काम करने का समय है। साथ मिलकर हमें कम कार्बन वाले एक सुदृढ़ भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के सिर्फ 5 सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश मिलकर लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहे थे।

बाजी फिल्म का ये गाना था उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल को सुर में ढाला अनु मलिक ने। आशिकी 2 फिल्म का अब गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत है, गीत और संगीत है मिथुन का।

ऐ दिल है मुश्किल, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन तैयार की प्रीतम ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक

0: भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग

0: 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 125,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। ये कार्यक्रम का पहला गाना है जमीन आसमान फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज है, अनजान के बोल हैं और धुन है आर डी बर्मन का।

आशिक की फिल्म का ये गाना था। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में गीत समीर ने लिखा और धुन बनाई नदीम श्रवण ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना लव स्टोरी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

20 साल बाद इसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी ने लिखा और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

104.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को। दोपहर की ठीक 2:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बांग्ला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के विकास को नया आयाम मिलेगा।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कल रांची के रातू में मत्स्य परियोजना का अवलोकन किया। इस दौरान श्रीमती तिर्की ने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार इसके लिए जरूरी सिस्टम तैयार करने की योजना बना रही है ताकि स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ सके। बिजली और पानी के मुद्दे पर भाजपा का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज संताल परगना के विभिन्न जिलों में जन सरोकार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। कल भी राज्य के कई हिस्सों में पार्टी ने प्रदर्शन किया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज झारखंड समेत देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। रांची सिविल कोर्ट परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत विशेष बेंचों का गठन कर कई मामलों का निष्पादन हुआ है। लोक अदालत के दौरान कई लोगों को न्याय मिला है। इस दौरान लाभार्थियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार और चोरी के उपयोग में काम आने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं।
2: इंटरसेप्ट किया गया, इसमें से 4 अपराधकर्मी जो है भागने का प्रयास किए उतर के, जिसमें से एक को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। उसके पास से हथियार मिला है, गाड़ी में जो है गृह वेतन के काफी सामान मिले हैं और उसकी निशानदेही पे कैश करीब 51,000 बरामद हो चुका है जो घटना में ले जाया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो अभियुक्त है उनकी भी सबकी पहचान हो गई है। पुलिस लगातार छापामारी कर रही है, वो भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
0: पलामू में भी अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली है। चैनपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उधर लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर लूटे गए सामान और अन्य चीजों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर आज स्कूलों और सांस्कृतिक संगठनों की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर शांति निकेतन के गौर प्रांगण में 42 गीतों का आयोजन किया गया। उनकी जयंती पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुरुदेव टैगोर ने असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक थे और विचारक एवं कवि थे। जमशेदपुर में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में शहर के शिक्षाविदों एवं इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के जीवन, शौर्य, त्याग और राष्ट्र रक्षा के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला। राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में आज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी 15 मई तक तेज हवाओं के

0: मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्री।
1: ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত

आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को अभी आप सुन रहे हैं और अब लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कुल पद है 1,865। शैक्षणिक योग्यता के तहत उम्मीदवार को किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। आयु सीमा है 20 से 28 वर्ष और स्टाइपेंड के रूप में उम्मीदवार को 15,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 और विस्तृत जानकारी के लिए आप unionbankofindia.co.in पर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। एनटीपीसी असिस्टेंट ऑफिसर के पदों के लिए नियुक्ति निकाली गई है। पद संख्या है 20 और शैक्षणिक योग्यता के तहत उम्मीदवार को बीटेक और बीई की डिग्री लेना जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मई 2026। विवरण एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं। फैक्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकूर में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। पद का नाम है ड्राफ्ट्समैन और इंजीनियर। शैक्षणिक योग्यता के तहत उम्मीदवार को बीटेक या डिप्लोमा होना जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मई 2026।

Indian Army CSBO सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। कुल पद है 190। शैक्षणिक योग्यता के तहत उम्मीदवार को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026।

എംസിഎൽ മഹാനദി കോൾഫീൽഡ്സ് എസ് के तहत असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। कुल पद हैं 500 और शैक्षणिक योग्यता के तहत उम्मीदवार को डिप्लोमा या आईटीआई की डिग्री लेना जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भूपेन हजारिका की आवाज में गीत, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यही संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, आदिवासी लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नीलू का जोहार। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे संताली लोकगीत। कलाकार हैं स्टीफन सोरेन और साथी।
1: स्टीफन सोरेन व साथियों की आवाज में ये गीत प्रस्तुत है। इस गीत के माध्यम से कहा गया है कि धरती पर पेड़ पौधे हरियाली रहने से यहाँ की हवा पानी मौसम सभी का संतुलन बना रहता है। साथ ही धरती पर हरियाली रहने से ओजोन परत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। हमें पर्यावरण को बचाए रखना है, साथ ही पेड़ पौधे जंगल हमारे साथी हैं, इन्हें भी बचाए रखना है।

झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आपने सुना। एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को। इस समय दिन के ठीक 3:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पंडित भीमसेन जोशी से ठुमरी।

उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी से ठुमरी, और इसी के साथ उप शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:45 हुए हैं। लोकगीतों का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए भोजपुरी लोकगीत, कलाकार हैं शंभुराम और साथी।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं शंभू राम और साथी।

शंभुराम और साथियों के आवाज़ों में भोजपुरी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे और इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। इस समय शाम के ठीक 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश।

साथ मैं कामिनी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बांग्ला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी

0: इस दौरान न्यायालय ने जेएसएससी को निर्देश दिया कि यदि नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थी हैं तो उन्हें नियुक्ति के लिए तुरंत अनुशंसित किया जाना चाहिए। पलामू पुलिस ने अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने 3 मई को हुई गोलीबारी में एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पिपराटांड थाना में हुई हत्या मामले में एक आरोपी को पकड़ा गया, जबकि लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा चैनपुर थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी मामले में एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पिछले दिनों करीब 15 लाख रुपए मूल्य के पाइप को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने पाइप चोरी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के ठीक 4:02 हुए हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए अनुराधा पांडवाल, पंकज उधास, चंदन दास, मनहर उदास की आवाजों में चंद गजलें।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आज के कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास, चंदन दास और मनहर उदास।

सुगम संगीत का प्रोग्राम आप सुन रहे थे। इसमें आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल, पंकज उधास, चंदन दास और मनहर उधास की कई चंद गजलें। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। शाम के 4:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

डब्बू मलिक के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे गर्लफ्रेंड फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था श्रेया घोषाल, सोनू निगम और साथियों ने।

डॉक्टर आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।

वीजू शाह के संगीत से सजा ये गीत आपने सुना है, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने। फिल्म गुप्त के इस गीत को गाया था साधना सरगम, उदित नारायण और साथियों ने।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इसे लिखा था इन देवर ने, धुन बनाई थी बप्पी लाहिड़ी ने। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारी इसी सुबह में रात 8 बजे से भी। आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। कुछ पलों में आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार मुख्यांश सुनिएगा।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय हमारे समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बांग्ला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के विकास को नया आयाम मिलेगा। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

0: दिलीप कुमार साहू ने बताया कि छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक चार पहिया वाहन और एक मालवाहक वाहन समेत तीन वाहन जब्त किए गए हैं। गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र में आज एक वाहन के पलटने से उस पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों घायलों को भवनाथपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार मुख्यांश का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 MHz पर।

0: रखा है। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए हमारा कार्यक्रम यू।

0: आकाशवाणी जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 MHz के युवाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। दिन की कड़ी धूप ढल रही है और हवा में शाम की शीतलता घुलने लगी है। पूरे दिन की भाग दौड़, काम काज और शोर के बाद ये दो पल हमने रखे हैं आपके लिए। मैं हूँ आयुषी झा
1: और मैं कमाक्षी सिंह और यह कार्यक्रम समर्पित है आप सभी श्रोताओं को। आइए इस ढलती शाम को साथ मिलकर और सुनहरा बनाएं, कुछ गीत, कुछ बातें और कुछ यादों से सजाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक युववाणी से।
0: आज 9 मई है, यानी भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती। आज हम उनके जीवन पे चर्चा करेंगे।
1: हाँ आयुषी, आज गुरुदेव की बंगला पंचांग के हिसाब से 165वीं जयंती है। आज ही के दिन 1861 में आसमान में एक अलग ही चांद निकला था और कोलकाता की गलियों में भी गजब का शोर था, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने पहली बार इस दुनिया में अपनी आंखें खोली थी।
0: कामाक्षी, उस चांद की रोशनी आज भी कम नहीं हुई। हमारे गुरुदेव ने जो शब्द दिए वो आज भी हमारे दिलों में जवान है।
1: सोचिए, एक ऐसे इंसान जिन्होंने भारत को उसका राष्ट्रगान जनगण मन दिया,
0: बांग्लादेश को भी उसका राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला दिया और खुद इस दुनिया में अमर हो गए। जन्म जन, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन्हें पढ़ते हैं, गाते हैं और याद करते हैं।
1: मगर टैगोर सिर्फ गीत नहीं थे, वह कला की पूरी दुनिया थे। 1913 में गीतांजलि, जो कि उन्हीं की द्वारा लिखी गई किताब है, उसके लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने।
0: कामाक्षी, क्या आपने शांति निकेतन का नाम सुना है?
1: हाँ, वह स्कूल भी हमारे गुरुदेव की ही देन है। वह कहते थे, तोते को पिंजरे में पढ़ाकर क्या मिलेगा, उसे आसमान दो।
0: हाँ, इसी कारण उन्होंने पेड़ों के नीचे क्लास शुरू किया। प्रकृति से दोस्ती, कला से मोहब्बत और सवाल पूछने की आजादी भी दी।
1: आयुषी, क्या आपने गुरुदेव की लिखी स्ट्रे बर्ड्स किताब पढ़ी है?
0: हाँ, मैंने पढ़ी है।
1: उस किताब में गुरुदेव ने एक पंक्ति लिखी थी, द बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ्स बट मोमेंट्स एंड हैज टाइम इनफ। इसका यह मतलब है कि तितली कैलेंडर नहीं देखती, वह पल जीती है

0: और उसी के लिए उसके पास पूरा वक्त है। तितली यह नहीं पूछती मेरे पास कितने दिन बचे हैं, वह पूछती है इस धूप में कौन सा फूल सबसे मीठा है। तो मेरे युवा मित्रों, मैं इस पंक्ति के जरिए आपसे यह कहना चाहती हूँ कि खुद को कभी किसी से भी पीछे नहीं समझना चाहिए। भले हम अपने ही रास्ते पर पीछे कैसे हो सकते हैं, हमें तितली की तरह अपने जीवन में अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को और अपनी प्रामाणिकता को हासिल करना है। भले धूप बेहद तेज है, लेकिन धूप की रोशनी का ही तो सहायता हमें अपने सबसे मीठे फूल तक पहुंच सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो चलिए आज की शाम का पहला गीत आओ मिलो चलें फिल्म जब वी मेट का सुनते हैं, जिसके गायक शान और उस्ताद सुल्तान खान हैं और गीतकार इरशाद कामिल और संगीतकार प्रीतम हैं।

0: अब गाथा सुनाती हूँ उस शौर्य की जिसका मेल नहीं किया जा सकता। शब्दों में बोली जा सके उनकी वीरता, ऐसा उपमा नहीं दिया जा सकता। फिर भी अथक प्रयास कर उनको शब्दों में मैं गढ़ती हूँ। महाराणा प्रताप पर लिखी गई ये कविता मैं पढ़ती हूँ। आंखों में सूर्य भरे तुर्क के नाम से रक्त उबल रहा, कपाल पे चंद्रमा का तेज लिए सिद्धांत उनका अविचल रहा। रण कौशल का क्या कहना, भारत माता खिलकर मुस्काती थी, चन्मा राजस्थान की धरती पे वीर धरती माता फूले नहीं समाती थी। अकबर की विशाल सेना भी उनके आगे लग रही थी नाटी, हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठी हल्दी घाटी। आरंभ हुआ युद्ध, राणा चेतक को एड़ लगाए, शत्रुओं को रौंदता चेतक, फिर राणा और मानसिंह टकराए। क्या दृश्य का सौंदर्य था जब चेतक ने गजराज पे पांव अपना चढ़ा दिया, राजपूतों की शान पे चांद जड़े और कुल का मान बढ़ा दिया। चरितार्थ करता चेतक उस दृश्य को जो स्वप्न में भी कल्पना से दूर था, पवन सा वेग और टापों में चिंगारी, चेतक राणा का गुरूर था। इधर संपूर्ण बल के साथ राणा ने मान सिंह पर प्रहार किया, अकबर की सेना के मनोबल को क्षण भर में तार तार किया। 72 किलो का कवच 80 किलो का भार लिए राजपूतों की शान वो बढ़ाता था। काट काट कर शीश मुगलों का रणचंडी को भेंट वो चढ़ाता था। कहीं मुंड पड़े कहीं कटा अंग, अकबर की नाकाम चाल हो गई, रक्त की नदियां बह निकली और पीली माटी लाल हो गई। मंजर इतना भयावह था सैनिकों के शवों का गणना भुला दिया, अद्वितीय युद्ध का प्रदर्शन कर मुगल सैनिकों को काल की गोद में सुला दिया। सूरज सा चमक और चांद सा तेज वो सबके मन की अभिलाषा है, वीरता शौर्य और स्वाभिमान का वो पूर्ण परिभाषा है। उनका गुणगान करता हिंदुस्तान का कण कण सुबह शाम है, ऐसे वीर महाराणा प्रताप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
1: आइए सुनते हैं इसी वीर रस से परिपूर्ण एक गीत।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान

0: जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
1: मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
0: कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।
1: कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।
0: जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है।

दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे वे जय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड

0: आपने सुना फिल्म गुलाल का गीत आरंभ है प्रचंड, जिसके गायक, गीतकार और संगीतकार पीयूष मिश्रा जी हैं।
1: अब हम बात करेंगे उस योद्धा की जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।
0: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के राजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। आज 9 मई है और आज ही के दिन सन 1540 में उनका जन्म हुआ था।
1: हाँ, वो सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी क्षत्रिय शासक थे। पिता के देहांत के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ था।
0: आपको पता है उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वे चित्तौड़ को तुर्क से मुक्त नहीं करा देते, तब तक ना वो स्वर्ण पात्रों में भोजन करेंगे, न कोमल शैया पर सोएंगे और ना राजमहल में निवास करेंगे।
1: अच्छा आयुषी, फिर क्या हुआ था?
0: फिर उन्होंने 56 भोग त्याग कर घास की रोटी खाई। महलों के अधिकारी ने वृक्ष के पत्तों पर सोकर वनों पर्वतों में रहकर जीवन बिताया।
1: बिल्कुल, उनका मानना था कि हम सिर कटा सकते हैं किंतु झुका नहीं सकते।
0: कामाक्षी, आपको पता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का संघर्ष भारत के गौरव का एक प्रमुख हिस्सा है।
1: हाँ, अकबर ने सब कुछ जीता किंतु राजपूत राणा के स्वाभिमान को न जीत सका।
0: अकबर ने 6 बार दूध भेजे किंतु महाराणा प्रताप उनके प्रस्ताव को ठुकराते रहे। वे कहते थे, मेवाड़ का सिर किसी तुर्क के आगे नहीं झुकेगा। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए प्राण दिए, मैं पराधीनता नहीं स्वीकार सकता।
1: आयुषी, क्या आप उनके प्रिय अश्व चेतक के बारे में जानती हैं?
0: हाँ, चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय अश्व था। युद्ध में चेतक का एक

0: पांव घायल हो गया था, फिर भी महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर लादकर उसने एक बड़ा नाला पार किया। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक का बलिदान स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।
1: हाँ आयुषी, वे केवल मेवाड़ के राजा नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के स्वाभिमान के प्रतीक हैं।
0: बिल्कुल, उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि साधन सीमित होने पर भी यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी शक्ति स्वाधीनता नहीं छीन सकती।
1: हाँ, उन्होंने हमें सिखाया सुविधा का त्याग किया जा सकता है, सिद्धांत का नहीं।
0: उनका बलिदान, शौर्य और राष्ट्र निष्ठा युगो युगो तक हमें प्रेरणा देती रहेगी। आज भी यदि कोई स्वार्थ और भय को छोड़कर स्वाभिमान का चुनाव करता है तो महाराणा प्रताप की आत्मा खिल उठती है।

0: आयुषी, अब हमारा अगले चर्चा का विषय है हमारी युवा पर फिल्मों का प्रभाव।
1: कामाक्षी, हम सभी वीकेंड पर फिल्म देखने बैठ जाते हैं, 3 घंटे हंसते हैं, रोते हैं, पर स्क्रीन बंद होने के बाद भी फिल्म हमारे दिमाग में चलती रहती है।
0: हाँ, आप सही बोल रही हैं। यहीं से शुरू होता है फिल्मों का प्रभाव।
1: कुछ फिल्में हिंसा को बढ़ावा देती है। कई बार फिल्म का हीरो 10-15 लोगों को अकेले पीट देता है और हमारे युवा उससे प्रभावित हो जाते हैं। छोटी सी बात पे युवा मार पीट पर उतर जाते हैं।
0: एकदम सही कहा आपने। फिल्म में तालियां बजती हैं, पर रियल लाइफ में पुलिस केस बन जाता है। युवा को समझना होगा कि स्क्रीन पर जो कूल लगता है वास्तविकता में क्राइम बन जाता है।
1: यही नहीं, आजकल युवा ड्रग, अल्कोहल और स्मोकिंग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इन चीजों से सिर्फ उनकी निजी जीवन पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार, समाज और छोटे बच्चों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है।
0: यहाँ तक कि कुछ फिल्में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार को भी प्रोत्साहित करती है। ऐसी फिल्में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अब्यूज और डोमिनेंस को बढ़ावा देती हैं। महिलाओं को निर्बल और पुरुषों पर आश्रित दिखाया जाता है।
1: इतना ही नहीं, फिल्मों में महिलाओं को केवल सौंदर्य का साधन माना जाता है और उनके व्यक्तित्व को मान्यता नहीं दी जाती है।
0: हाँ, लेकिन कुछ सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। महिलाएं अपने अधिकार और सम्मान के लिए स्टैंड ले रही हैं। और आप जानते हैं, फिल्में हमारी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत प्रभाव डालती हैं।
1: हाँ, जैसे कुछ फिल्मों ने सामाजिक मानसिकता को पीछे छोड़कर थेरेपी और काउंसलिंग जैसी चीजों को नॉर्मलाइज किया है। फिल्म फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इक्वली ट्रीट करना सिखा रही है।
0: कुछ फिल्में युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र निष्ठा की भावनाएं भर देती हैं। ये फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी कितनी कुर्बानी से मिली थी। युवा के अंदर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जग जाती है।
1: फिल्म हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालती है, हमारी सोच, पहनावा, बोलचाल और रोज के फैसले तक बदल रही है। फिल्म तो हमारी जीवन शैली का आईना बन चुका है।
0: हमें किस फिल्म से प्रभावित होना है और किस फिल्म से नहीं, इसका चयन तो हमें स्वयं ही सोच समझ कर करना पड़ेगा।
1: फिल्में सिर्फ कहानी नहीं कहती, वो हमारी भावनाओं का मौसम भी रचती है।
0: मौसम, वो तो खुद में सबसे बड़ा निर्देशक है। आइए आज के मौसम का हाल जानें। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा है और न्यूनतम 22 डिग्री होने की संभावना है। दिन में तेज गर्मी के बाद शाम को हल्की राहत मिली।
1: अब बढ़ते हैं IPL अपडेट्स की ओर। कल दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में कोलकाता की टीम ने दिल्ली की टीम को उनके घर पर हराया। टॉस जीतकर कोलकाता की टीम ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और दिल्ली कैपिटल्स की पारी को 142 रन 8 विकेट के नुकसान पे रोक दिया। इसके बाद मात्र 14.2 ओवर में कोलकाता की टीम ने 147 रन जड़े और मुकाबला अपने नाम किया। कोलकाता के फिन एलन ने तूफानी शतक लगाया। अभी से दो घंटे बाद राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस का मैच शुरू होने वाला है। मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा, जो जयपुर में स्थित है। अंक तालिका में 12 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स चौथे पायदान पे और गुजरात टाइटंस पांचवें पायदान पे है, किंतु आज के मुकाबले की विजेता टीम सीधे दूसरे पायदान पे पहुंच जाएगी।
0: आज का शाम काफी मजेदार था, हमने बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना। तो चलिए, इस शाम के नाम पेश है एक ऐसा गाना जो आपके मन में मिठास घोल दे।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म टू स्टेट्स का गाना मस्त मगन, जिसे अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा ने गाया है। इसके गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार शंकर एहसान लॉय हैं।
1: अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। मैं कमाक्षी
0: और मैं आयुषी, अब हमें आज्ञा दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM 102.4 MHz पर।
1: नमस्कार।

0: ने खार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: संदेश आपने सुने, शाम के 5:31 हो चुके हैं। हमारे केंद्र से आप सुनिए श्रमिक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम कल कारखाने।

श्रमिक श्रोताओं, शनिवार की इस प्यारी से शाम में हम एक बार फिर हाजिर हैं जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम कल कारखाने के साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और

0: श्रोता साथी, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस भेंट वार्ता के साथ। विषय है प्रवासी पक्षियों की अद्भुत दुनिया। भेंट वार्ताकार हैं विनय कुमार ठाकुर और उनसे बातचीत कर रही हैं स्नेहलता। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: प्रकृति की एक अद्भुत और प्रेरणादायक पहलू है प्रवासी पक्षी। हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर ये पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जहां मौसम अनुकूल होता है। ऐसा वे मुख्य रूप से भोजन, अनुकूल जलवायु और प्रजनन के लिए करते हैं। ये यात्रा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समय पर होती है। सबसे मजेदार और रोचक बात यह है श्रोताओं कि ये पक्षी कभी अपना रास्ता नहीं भूलते। इनमें से कुछ पक्षी हजारों किलोमीटर बिना रुके उड़ सकते हैं और कुछ उड़ते समय ही आराम कर लेते हैं। प्रवासी पक्षियों से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विनय कुमार ठाकुर जी को। ठाकुर जी नमस्कार, साथ ही हार्दिक अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: हम सवालों में आगे बढ़ते हैं विनय जी। शहरीकरण क्या इनके प्रवास को प्रभावित कर रहा है विनय जी? प्रदूषण प्रभावित कर रहा है?
2: निश्चित तौर पर। देखिए क्या है कि बर्ड्स, उनकी खास शारीरिक संरचना होती है और उनको जो ऊर्जा और जो उनका वजन है उसका एक खास अनुपात होता है, तो उनको खास तरह के पोषण की जरूरत होती है। जब प्रदूषण होता है तो उनकी क्षमता प्रभावित होती है, क्योंकि वायु के साथ जो प्रदूषक तत्व उनके शरीर में प्रवेश करती है तो उनके जो श्वास के जरिए उनको कई तरह की समस्या होती है, तो उनकी क्षमता प्रभावित होती है, तो ये काफी प्रभावित करती है उनको। और जो शहरीकरण क्या होता है कि आम तौर पे जब लोग शहर बसाते हैं तो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि उस जगह की जो जियोमॉर्फोलॉजी है, उस जगह में जो जल का प्रवाह का जो क्षेत्र है, उस जगह में जो इकोलॉजी है ना, वो सब चीजों का ख्याल नहीं करने की वजह से क्या होता है कि पक्षी जो होते हैं उनका जो पर्यावास जो जिसको हैबिटेट हम कहते हैं उसको वो ब्रेक कर देते हैं ना। तो वो पक्षियों के लिए जो आवश्यक चीजें जो हैं, जो खास तरह के जो पेड़ हैं जिसमें उनको खास तरह का, देखिए पक्षियों को सिर्फ, कई लोगों को लगता है कि हम एक पेड़ लगा देंगे तो पक्षियों की जरूरत पूरी होगी, ऐसा नहीं होता है। पक्षियों को सब चीज की जरूरत होती है, उनको रहने के लिए एक पेड़ चाहिए, उनको भोजन के लिए खास तरह का एक पेड़ चाहिए, और फिर उनको एक खास तरह का पेड़ चाहिए जहाँ पे उनका घोंसला सुरक्षित रहे, उनके बच्चे सुरक्षित रहे। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जो झाड़ियां जो होती है, कटीली झाड़ियां जिनको हम लोग आमतौर पे बेकार मानते हैं, वो उनके लिए काफी उपयोगी होती है, खास करके जो छोटी चिड़िया होती है, जो प्रेडेटर पक्षी होते हैं उनसे उनकी रक्षा करती है। और देखिए कि पर्यावरण में क्या है ना कि एक संतुलन है, जो शिकारी पक्षी है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में छोटी चिड़िया चाहिए, लेकिन छोटी चिड़ियों की भी संख्या अगर कम हो जाएगी तो फिर जो शिकारी पक्षी है उनकी भी संख्या कम हो जाएगी,
1: क्योंकि उनको खाने को
2: तो पूरा संतुलन जो है वो टूट जाएगा। और उससे क्या होगा, फिर वो जो काम करते हैं, जो मान लीजिए पेस्ट कंट्रोल करते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को खा करके हमारा जो आर्थिक फायदा करते हैं
1: वो
2: प्रभावित। और कई बार लोगों को लगता है कि ये छोटी चिड़िया है इसका क्या योगदान हो सकता है, लेकिन कई तरह के आप देखेंगे फल फूल जो होते हैं उसके लिए खास तरह की चिड़िया

0: यह होती है कि उनके शरीर की जो बनावट होती है, उनको जो चोंच का जो आकार होता है, उनके पंखों का जो आकार होता है, वो खास तरह के जो फूलों के पॉलिनेटर के लिए बने होते हैं। उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण आप देखेंगे, जिसको हम लोग हमिंग बर्ड कहते हैं या सन बर्ड कहते हैं, उनके जो हिंदी में फूल सुंगनी भी हम लोग कहते हैं, तो वो खास तरह के बने होते हैं, लंबी चोंच होती है, वो फूलों से नेक्टर लेते हैं, उस क्रम में परागण करते हैं वो। तो वो फूलों का जो आकार है और चिड़ियों के चोंच का आकार है, वो बिल्कुल एक संगति में होता है।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए हमको जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि सभी जो चीजें जो है हमको जरूरत है।
1: एक और सवाल, इन प्रवासी पक्षियों के आने से हमारे पर्यावरण को क्या लाभ पहुंचता है?
0: जरूर पहुंचता है। देखिए प्रवासी पक्षियों में आप देखेंगे कि कई तरह के होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल समूह में होते हैं, बड़े समूहों में होते हैं, कॉलोनीज में होते हैं। तो देखिए कि जो पक्षी जो होते हैं उनके जो एक्सक्रीटा होती है उनमें कई तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे गुआनो हम कहते हैं, वो बहुत जो है जो मिट्टी के लिए जो है जरूरी पोषक तत्व, तो खास करके नाइट्रोजन वगैरह की आपूर्ति करते हैं।
1: अच्छा।
0: नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्योंकि हड्डियों में फास्फोरस होता है तो उसकी वो आपूर्ति करते हैं।
1: अच्छा।
0: तो वो जो कॉलोनीज जो होती है ना वो काफी लाभकारी होती है, है ना? तो वो खास तरह के पर्यावरण के लिए ये जो पर्यावरण जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। और फिर बाकी हम तो देखते हैं कि कैसे उससे पर्यटन है वो कैसे प्रभावित होता है, स्थानीय जनजाति। देखिए कि हमारे जो मिथक कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, उन कहानियों में देखेंगे बड़ा जो है मधुर और संगत रिश्ता रहा मानव के साथ में। और देखिए मजेदार बात आप देखेंगे कि कई गांव हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो इन पक्षियों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मानते हैं।
1: आगे बढ़ेंगे विनय जी, और उन प्रमुख स्थानों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जहाँ ये मुख्य रूप से प्रवासी पक्षी आते हैं, वो स्थान कौन कौन से प्रमुख रूप से?
0: देखिए जो आमतौर पे जो प्रवासी पक्षी होते हैं कि जो शारीरिक बनावट है और उनकी जो भोजन का प्रकार है उसके हिसाब से वो पर्यावास करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कम पानी वेडर जिनको बोलते हैं, वो कम पानी जहाँ होता है तो भोजन की उपलब्धता होती है वो कर। कुछ लोग जो होते हैं वो पानी में तैरते हैं, वो अलग तरह के होते हैं ना। तो आमतौर पे वेटलैंड जो होते हैं, वेटलैंड इनको काफी आकर्षित करते हैं ना। तो उसमें आप देखेंगे जैसे अलग अलग पक्षियों के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टॉर्क हुए, पेलिकन्स हुए, है ना, उसके बाद आपको फ्लेमिंगोज हुए, है ना
1: जी।
0: फिर जो प्रेडेटर्स होते हैं वो अलग होते हैं, छोटे पक्षी जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो टिट्स हैं, है ना, वो अलग बड़ी संख्या में आते हैं। तो बहुत सारे वेटलैंड है जो काफी फेमस है माइग्रेशन के लिए, जैसे एक तो भरतपुर का केवला देव है, है ना, तमिलनाडु में पल्ली करनी है, पुलिकट लेक है, कच्छ जो है फ्लेमिंगो के लिए बहुत फेमस है ना, तमिलनाडु में उस से नजदीक पौंडीचेरी में जो है उस्तुरी लेक है वो बहुत फेमस है ना। बिहार में भी जो है केवला देव, कांवर लेक जो है बहुत फेमस है ना।
1: अच्छा।
0: लेकिन बहुत जरूरी है कि स्थानीय समुदायों की जो भाषा है, शब्द है उन पक्षियों को लेकर के, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, लोगों को बताया जाए। जैसे साइंटिफिक लिटरेचर में उनका कुछ अलग नाम
1: कुछ
0: है और स्थानीय प्रजाति वाले लोग अलग बुलाते हैं। अच्छा, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं ना तो हमारे जो भाषा को भी समृद्ध करते हैं। कई पक्षी हैं उनके कई स्थानीय नाम होते हैं और बड़ा आकर्षक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पैराडाइज फ्लाई कैचर है ना, तो उसका नाम शाही बुलबुल भी है, सुल्तान बुलबुल भी है, दूधराज भी है।
1: अच्छा।
0: है ना, तो नाम कितना देखिए प्यारा लगता है। ऐसे ब्राह्मणी डक है ना, ब्राह्मणी डक जिसको हम सुरखाव कहते हैं ना
1: जी।
0: तो वो भी हिमालय से उतर करके नीचे आती है ना। कुछ वल्चर्स हैं जो बिल्कुल हिमालय पार करके आते हैं, है ना, बियर्डेड वल्चर है, जैसे हिमालयन बियर्डेड वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर है ना, जो है इनकी ताकत काफी होती है, काफी ऊंचाई पे उड़ते हैं और काफी समझदार माने जाते हैं ना
1: जी,
0: बहुत सीख देते हैं हमको।
1: आगे बढ़ेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रवासी पक्षियों का संरक्षण जैसा आपने बताया बहुत जरूरी है, तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं इनके संरक्षण में और आम आदमी इसमें क्या योगदान कर सकता है?
0: देखिए एक तो बहुत जरूरी है कि उसको लेकर के हम जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करें, स्थानीय लोगों को उसमें शामिल करें, उनको बताएं
1: जी बिल्कुल
0: क्या रिश्ता है, खास तरह का के पक्षियों का खास

0: तरह के पेड़ का, खास तरह के जगहों का। जैसे मान लीजिए एक जो पक्षी है जिसको हम लोग पंचीरा बोलते हैं, ठीक है ना, स्किमर बर्ड बोलते हैं, है ना, तो वो बिल्कुल पानी की सतह पे चोंच खोल करके वो जाए। और उसमें देखिए कि मजेदार बात है कि आमतौर पे चिड़ियों की जो होती है वो ऊपर वाली चोंच छोटी होती, नीचे वाली चोंच जो ऊपर वाली चोंच जो होती है वो बड़ी होती, नीचे वाली छोटी होती,
1: छोटी होती।
0: लेकिन स्कीमर्स में जो होता है वो नीचे वाली बड़ी होती, ऊपर वाली छोटी होती है। और बिल्कुल वो पानी की सतह से वो करके चलती है और उससे वो करती है। तो हमको जो है वो पक्षियों के बारे में जानकारी करनी
1: जरूरी
0: है। इस समय में कई जगहों पर जो है इसको लेकर के वो रिलीजियस बिलीफ भी है उसको लेकर के, जैसे मान लीजिए जो साइबेरियन क्रेन्स हैं तो लद्दाख वगैरह में जब आते हैं तो उसको बौद्ध धर्म में काफ़ी संरक्षित माना गया है, लोग उनको नहीं मारते, मारना पाप समझा जाता है ना।
1: अच्छा।
0: तो उसी तरह बहुत जगह जो है ये इनको मानते हैं कि ये मेहमान पक्षी हैं, इनको हमको नहीं मारना चाहिए, तो लोग उनको संरक्षित करते हैं। पर उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम बच्चों को उनके बारे में बताएं और उनके प्रयास के बारे में बताएं, उनकी आदतों के बारे में बताएं। अच्छी बात यह है कि जो है पक्षियों को लेकर के जो है जागृति बढ़ी है, तो लोग जो है बच्चों को बताते हैं, बर्ड वॉचर्स क्लब जगह जगह खुल रहे हैं, है ना, और उसको पर्यावरण में ये पर्यटन से भी जोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी स्थानीय जनजातियों को जब उसका आर्थिक लाभ होता है तो उसको जैसे मैंने आपको आमूर फलकन का एक उदाहरण बताया कि आमूर फलकन का बहुत सारे लोग शिकार कर लेते थे पहले, फिर जब उनको बताया गया कि ये कितना महत्वपूर्ण है तो स्थानीय लोग जो है उनको संरक्षित करने का काम करते हैं। यही काम जो है साइबेरियन क्रेन के साथ भी हुआ है, पेलिकन्स के साथ भी हुआ है,
1: है ना। मतलब ये कि लोगों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी, लोग जागरूक हो वो ज्यादा जरूरी, इन पक्षियों के बारे में जाने, उनके महत्व के बारे में जाने।
0: जैसे वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने एक जगह लिखा है कि बिना परिचय के प्रेम नहीं उपजता। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमको इन पक्षियों के साथ परिचय बहुत जरूरी है, परिचय उनके रंगों के बारे में, परिचय उनके पंखों के आकार के बारे में, परिचय उनके खान पान के बारे में, उनके
1: महत्व के बारे में,
0: उनके संगीत के बारे में, कथाओं से जोड़ करके जो है बहुत सारी चिड़ियों के बारे में जो है कि उनके स्थानीय नाम है, ठीक है ना, तो किसी का नाम धोबिन चिड़िया है, किसी का नाम नाइन है, किसी का नाम कोतवाल है, किसी का धनचुआ नाम है, किसी का डखर नाम है, है ना। देखिए हमारे कहानियों में भी जो है चिड़ियों के साथ बहुत रिश्ता रहा है। एक मजेदार जो कहानी, जैसे हम लोगों ने दुष्यंत राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी सुनी है, और कहानी में कि शकुन पक्षी ने उनको पाला था। अब वो अगर आपको कोई बता दे कि यही शकुन पक्षी है तो आप उसका एक नाम जो है महोक भी है, है ना, फिजेंट फैमिली का है वो, कुल फिजेंट उसको बोलते हैं, वो कौवे की तरह का थोड़ा बड़ा होता है, कम उड़ता है वो, है ना, और उसका पंख जो है भूरा लाल। एक नाम उसका जो है वो भारद्वाज भी है, एक नाम उसका महोक भी है, है ना। तो जब आप उनको बताते हैं कि यही शकुन पक्षी है तो लोगों को आकर्षण जगता है, उसको बचाने का काम करते हैं। उसी तरह खंजन पक्षी है, कविताओं में खंजन नयन जिसका नाम आता है ना, उसी तरह चातक है, ठीक है ना, जिसको जैकोबियन कुक्कू भी बोलते हैं, पाइड कुक्कू भी बोलते हैं, हम लोग चातक बोलते हैं उसको, है ना। तो ये सब चीजें जब हम बताते हैं लोगों को, है ना, तो उनका आकर्षण बढ़ता है उन चीजों के बारे में और उनको संरक्षित करते हैं, ठीक है। फिर जब हम बताते हैं कि देखिए ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो इतने दूर देश से आए हैं, इतने किलोमीटर दूर करके आए हैं हमारे यहाँ जो मेहमान है, तो हम उनसे प्रेम करना सीखते हैं और उसका महत्व जानते हैं लोग संरक्षित। एक ये भी चीज बहुत जरूरी है कि जब हम उनको बताएं तो उनको जो सांस्कृतिक तत्व है ना उनके साथ जोड़े करें, बच्चों को कहानियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। कहानियां जब हम बताते हैं तो बच्चों का उनकी स्मृतियों में वो चीज जुड़ी रहती है, जब वो उनकी स्मृतियों में जुड़ी रहती है तो उनके साथ रिश्ता होता है, फिर हम आप उसको संरक्षण करने का काम।
1: विनय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और प्रवासी पक्षियों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रवासी पक्षियों की अद्भुत दुनिया इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे ये भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे विनय कुमार ठाकुर और उनसे बातचीत कर रही थी स्नेहलता।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: इस संदेश के बाद आइए श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

तपस्या फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी आरती मुखर्जी और किशोर कुमार की। गीत के बोल लिखे थे MG हशमत ने और इसे संगीत से सजाया था रविंद्र जैन ने।

श्रोताओं, केंद्र सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनके माध्यम से महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। जो वो करना चाहती हैं इन योजनाओं के माध्यम से कर सकती हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, स्वाधार गृह योजना और राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। श्रोताओं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर ये योजनाएं चलाती हैं ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका उद्देश्य लड़कियों के अस्तित्व और शिक्षा को सुनिश्चित करना है। सुकन्या समृद्धि योजना ये बेटियों के लिए बचत और शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजना है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, ये योजना श्रोताओं किशोरियों के लिए है जो पोषण और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। CBSE उड़ान स्कीम, ये योजना तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ये योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा श्रोताओं, सरकारी महिलाओं की किस प्रकार से सुरक्षा सहायता की जा सके इसका भी ध्यान रखती है और इसके लिए वन स्टॉप सेंटर यानी सखी केंद्र, इसमें हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे पुलिस, चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करती है। महिला हेल्पलाइन, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन और गैर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करती है। राष्ट्रीय महिला कोष, जो निम्न आय वर्ग की महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस तरह श्रोताओं, ये सभी योजनाएं महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा बनाई गई है।

आशा भोसले की आवाज में ये था लव स्टोरी फिल्म का गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दीजिए अनुमति रश्मि तिवारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the chief minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs, including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu, were sworn in as cabinet ministers. The newly elected MLAs of the West Bengal Legislative Assembly will take oath on the 13th of May. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen and other leaders of the Bharatiya Janata Party were present at the swearing-in ceremony. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking the oath as the Chief Minister of West Bengal. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK has claimed that it has secured support of 120 MLAs to form a new government in the state. Tamilaga Vetri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, required the majority mark of 118 in the 234-member house to form a new government. The party said both the VCK and the IUML have extended unconditional support to it for government formation. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post,

हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:10 हुए हैं।

झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नीलू का जोहार। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उराव लोकगीत। कलाकार हैं सोमराज तिर्की।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। कार्यक्रम आपने सुना है FM 2.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। शाम के 6:20 होने को हैं। अब संस्कृत समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे ही देशे विवादानां सौहार्दपूर्ण रीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रीय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबेगो देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मेलनं साधितवान्। अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15-वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आरएन रविः श्री शुभेंदु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवी के दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। 34-200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18-100 विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जी सेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70% भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 विधायकाः सीपीआई सीपीआईएम वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं 2-2 विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य संपूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रीय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्री पाण्डेयः अवोचत् यत् 23-2000 25-2000 यावत् 12 राष्ट्रीय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
3: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकरः भारत त्रिनिदाद टोबैगो देशानां मिथः पारंपरिक संबंधानां प्रशंसाम् अकरोत्। त्रिनिदाद टोबैगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां मंत्रालयस्य समारोहे डॉक्टर जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधानां अथ ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबैगो अमुना सह परंपरागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः संबंधाः वर्तन्ते। उभयोः देशयोः जनाः वेशभूषां क्रीडां आहार व्यवहारं च समेत्य परंपराः यावत् नैकेषु विषयेषु साम्यं संददते। डॉक्टर जयशंकरेण प्रधानमंत्रिणा कमला प्रसाद विशेषवर्येण सह मेलनं विधाय द्विपक्षीय सहयोगं इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं चर्चा कृता। यात्रावधौ पर्यटनं विदेश कैरिकॉम मंत्रालय भवनस्य सौरोर्जा संचालनं विविध परियोजनाः अथ च आयुर्वेद केन्द्रस्य स्थापनां समेत्य नैकेषु विषयेषु सहमतिः जाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः कर्नाटकस्य बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैदराबाद नगरे प्रायः 9,500 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां राष्ट्रीय राजमार्गस्य चतुः भागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री वारंगल स्थले पीएम मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्रीमोदी हैदराबाद अत्याधुनिकं कर्करोगपरं चिकित्सालयमपि लोकार्पयिष्यति। अद्य गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य 65वीं जयन्ती वर्तते। दिनमिदं उपलक्ष्य शान्तिनिकेतनं विश्वभारती विश्वविद्यालयं अथ बांग्लादेशं समेत्य जगतः अनेकेषु स्थलेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः समायोजिताः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमितशाहः अथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः पोचिशे बोईशाख इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च केवाईसी मानकानां उल्लंघनमुद्दिश्य हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस सहैव यस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। पृथक पृथक वक्तव्येषु भारतीय रिजर्व बैंकेन सूचितं यत् तेन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः प्रस्थापितः। अपरत्र यस बैंक इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः आरोपितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामि 5 दिवसेषु केरलम राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रचंड वायुना च सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन अद्य राज्यस्य 9 जनपदेषु पीतवर्णीया संचेतना अपि प्रसारिता। श्वः अपि संचेतना तावत् 7 जनपदेषु यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्याजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीपतटेषु गमन परिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्नाटक तटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं 7:30 वादने जयपुर नगरे आरप्स्यते। अवधेयम यत अंक तालिकायां राजस्थान दलम चतुर्थे गुजरात दलम च पंचमे स्थाने स्तः इति वार्ताः।

संस्कृत समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं।

0: पर इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: इस संदेश के बाद सुनिए कृषक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहनों को नीलू का जोहार। किसान भाई बहनों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग वाले जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो शामिल हो सकते हैं। जिन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलेगी। इस योजना का लाभ उन लोगों को ही मिलेगा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो और मासिक आय 15,000 से कम हो। EPFO, NPS और ESIC के सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक उम्र के अनुसार 55 से लेकर 200 रुपये प्रति माह का योगदान करना होता है। सरकार भी उतनी राशि मिलाती है, जो 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में तब तक मिलती है जब तक लाभार्थी जिंदा रहता है। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को पेंशन का 50% यानी 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए नज़दीकी CSC केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर या मानधन.in वेबसाइट के माध्यम से आधार कार्ड और बैंक खाते के साथ पंजीकरण आप करा सकते हैं। किसान भाई बहनों, अगर आप घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक या अन्य असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

खेतिहर भाई बहनों, गर्मी के मौसम में हरी खाद तैयार करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और नमी बनाए रखने का भी ये एक बेहतरीन तरीका है। हरी खाद के लिए गर्मी में तेजी से बढ़ने वाले और कम पानी में जीवित रहने वाले फसलों को चुनें, जैसे ढेचा, सनई, लोबिया और ग्वार। ये सब गर्म और सूखे मौसम में तेजी से बढ़ते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ाते हैं। ये सब कम उपज वाली भूमि में भी अच्छी तरह से उगते हैं। किसान भाइयों, इनकी बुआई इस महीने से आप अगले महीने तक कर सकते हैं। बीज को छिटक कर बोएं और हल्का जुताई कर दें। बुआई के बाद पहली सिंचाई जरूर करें ताकि बीज जल्दी अंकुरित हों। चूंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे में वाष्पीकरण भी तेजी से होता है, इसलिए बीज बोने के बाद सूखे पत्ते, पुआल आदि की हल्की परत ढकें ताकि नमी मिट्टी की बनी रहे। अंकुरण के बाद भी खेत में नमी बनाए रखें ताकि फसल सूखने ना पाए। बुआई के 40 से 50 दिन बाद जब फूल आने शुरू हो जाए तब फसल को मिट्टी में पलट दें। इस समय पौधे नरम होते हैं और जल्दी सड़ने लगते हैं। आप चाहे तो रोटावेटर या हल की मदद से फसल को काटकर खेत में ही जोत दें। पलटने के बाद खेत में पानी डालें ताकि फसल जल्दी सड़कर खाद बन जाए। इस तरह नाइट्रोजन और कार्मिक पदार्थों से भरपूर हरी खाद तैयार हो जाएगी। तो ग्रामीण श्रोताओं, इस मौसम में ये जरूर करें।

गर्म श्रोताओं, इस मौसम में दालचीनी का सेवन सीमित मात्रा में करने से शरीर को ठंडक और पाचन में लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये पेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दालचीनी का सेवन कैसे करें, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। केवल दालचीनी का सेवन कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए रात भर 1 से 2 गिलास पानी में 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 1 चम्मच भिगोए हुए सब्जा के बीज रखें। सुबह खाली पेट इस पानी को पीने से पाचन सुधरता है और शरीर को ठंडक मिलती है। किसान भाई बहनों, चुटकी भर दालचीनी पाउडर को ठंडे दही, छाछ या स्मूदी में मिलाकर भी आप सेवन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक चुटकी दालचीनी पाउडर को पानी में उबाल लें, फिर ठंडा करके इसमें नींबू और शहद मिलाकर पिए। अगर आप काम करने बाहर जा रहे हैं तो अपनी बोतल के पानी में दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डाल के रख सकते हैं और दिन भर आप उसी पानी को पिए। खेतिहर भाई बहनों, दालचीनी बहुत ही फायदेमंद है, पर इसके सेवन करते समय कुछ सावधानियां भी बरतने की ज़रूरत है। 1 दिन में 1 छोटे चम्मच से ज़्यादा पाउडर या 1 इंच से ज़्यादा लकड़ी का उपयोग बिल्कुल ही ना करें। गर्भवती महिलाओं को गर्मी के दिनों में दालचीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। दालचीनी का सेवन करने से ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है और वजन कम करने में भी मदद करता है। गर्मी में अपच और पेट दर्द की समस्या आम है। दालचीनी का सेवन करने से पाचन क्रिया सुधरती है, पर इसके सेवन सही मात्रा में और पूरी सावधानी बरतते हुए ही करें।

0: आप हैं श्री गुंद्रा माडी वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र। इनसे हम जानकारी लेंगे कृत्रिम जैविक खाद तैयार करने की विधियों का और उससे लाभ क्या है। गुंद्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे जैविक खाद क्या है।
1: पेड़ से, पौधा से, पशु से, जंतु से, उनका मैल के रूप में या सड़ा गला पदार्थ के रूप में जो हमें मिलता है उसको हम जैविक खाद कहते हैं। जैविक खाद के अंतर्गत केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, सड़ा गला पदार्थ प्लस जीवाणु खाद आदि आते हैं।
0: जी, कौन कौन सा जैविक खाद है जो किसान हमारे उपयोग करते हैं?
1: किसान जो जैविक खाद के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो कंपोस्ट है
0: जी,
1: गोबर है, खल्ली है, उसमें प्रमुख रूप से नीम, करंज, महुआ आदि की खल्ली का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अभी केचुआ खाद का भी किसान प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो जीवाणु खाद है, जैसे राइजोबियम कल्चर है, पीएसवी कल्चर है, एजो एस्पिरिलम है, ब्लू ग्रीन अलगी है।
0: तो जैविक खाद का उपयोग करना ही जैविक खेती है क्या?
1: जी, जैविक खेती में हम जो है मुख्य रूप से केवल जैविक खाद के अलावा दूसरा प्रयोग नहीं करते हैं। जैविक खेती का मूल सिद्धांत ये है कि जो प्रकृति से जो वस्तु हमें मिल रहा या सड़ने गलने के बाद उसको फिर से जमीन में हमें देना और उससे फसल उगाना, फिर उस फसल को फिर जमीन में ही देना, यानी कि एक चक्र चलाना, और बाहर से उसमें हम कोई रासायनिक पदार्थ या तत्व का प्रयोग नहीं करते हैं।
0: प्रमुख जैविक खाद जैसे केचुआ खाद अच्छा माना जाता है, इसके बनाने की विधि क्या है?
1: केचुआ खाद बनाना बहुत आसान है। केचुआ खाद बनाने के लिए आपके पास सड़ा गला पदार्थ चाहिए, गोबर चाहिए। ऐसा देखा गया है कि 60:40 यानी कि 60 भाग पेड़ पौधा सड़ा गला चीज चाहिए और 40 भाग जो है हमको गोबर चाहिए।
0: अच्छा।
1: और इसमें अगर हम केचुआ के लिए खाना के रूप में देते हैं तो केचुआ हमको केचुआ खाद तैयार करके देता है। लेकिन केचुआ खाद बनाने के लिए कई विधियां हैं।
0: अच्छा।
1: उसमें से प्रमुख रूप से एक सतही विधि होता है जो जमीन के सतह के ऊपर में हम डाल देते हैं, दूसरा गड्ढा विधि यानी कि गड्ढा बना के हम करते हैं। गड्ढा विधि ज़्यादा प्रचलित है। गड्ढा का आकार जो है 3 फीट चौड़ाई, 3 फीट गहराई, लंबाई अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन इसको आप कोई छायादार स्थान में बनाइए, यानी कि पुआल का घर हो या जहाँ पे पानी और धूप नहीं आता हो। और जब हम बेड तैयार करते हैं सबसे नीचे हम जो है फसल का डंठल, जैसे राहड़ का हो सकता है, मकई का हो सकता है, बैंगन, टमाटर, कोई भी फसल का अवशेष,
0: फसलों का डंठल,
1: डंठल
0: पत्तियां, क्या ताजी होनी चाहिए या सूखी?
1: ताजी नहीं, ये सूखी होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और उसको सबसे नीचे हम 2 से 2.5 इंच बिछावन के रूप में बिछाते हैं
0: जी।
1: इसके ऊपर में 1 फीट गोबर देते हैं।
0: अच्छा।
1: उसमें भी गोबर में जो है सड़ा गला पदार्थ अगर मिला हुआ रहता है तो काफी अच्छा है। 1 फीट के बाद हम 3-4 इंच मोटा जो है 15-20 दिन पुराना गोबर का घोल डाल देते हैं।
0: अच्छा।
1: इसके ऊपर में फिर और 1 फीट जो है हम गोबर और सड़ा गला पदार्थ डालते हैं, फिर हम जो है गोबर का 3-4 इंच घोल डालते हैं। इस तरह से 3 फीट का गड्ढा को पूरा भरते हैं। भरने के बाद उसको जूट के बोरी से हम ढक देते हैं। जूट के बोरी से इसलिए ढका जाता है कि उसके अंदर का नमी बरकरार रहे। वैसी जो बेड का जो तापमान है ये करीब 20 से 25 डिग्री होना चाहिए और उसमें आर्द्रता नमी जो है 60-70% होना चाहिए, जिसे केचुआ बहुत आसानी से उसमें खा सकता है, पल सकता है, बढ़ सकता है। और एक चीज ध्यान देने की बात है, जब हम बेड का तैयार कर लिए 7-10 दिन में एक बार हमको उसको पलटी कर देना चाहिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि केचुआ अपने से उसको उल्टा पलटी नहीं कर
0: नहीं
1: सकते,
0: कर सकते।
1: तो ऐसा परिस्थिति में आप उसको चलाते रहेंगे तो केचुआ आसानी से खाते रहेगा।
0: अब आप ये बताएं कि ये केचुआ खाद तैयार करने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: केचुआ खाद बनाने के लिए जो सावधानी है वो हमेशा कोई छायादार स्थान में आप बनाइए, जहाँ सीधे पानी नहीं गिरता हो, बरसात का पानी नहीं गिरता हो, और प्लस उसमें सूरज का रोशनी नहीं आता हो।
0: अच्छा।
1: और दूसरा कि जो है जो प्लास्टिक हुआ या जो कांच हुआ या पत्थर का टुकड़ा हुआ वैसी चीज ना डालें जो नहीं सड़ता हो।
0: अच्छा। अच्छा, और साथ ही क्या कोई दूसरे जीवों से भी डर है क्या, बचाव जरूरी है क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इनके कई एक दुश्मन है, जैसे चींटी हुआ,
0: अच्छा
1: मेंढक हुआ, गिरगिट हुआ, या घर में जो मुर्गा मुर्गी अगर आप पाले हुए हैं वो काफी आसानी से इसको खाते हैं। तो
0: अच्छा
1: इसीलिए इसको नायलॉन का नेट आता है, जाली से उसको ढक करके रखिए,
0: जी
1: या किसी तरह से उसको आपको प्रोटेक्शन देना है,
0: जी
1: क्योंकि एक बार उनको मिल जाएगा, खाना शुरू कर देंगे तो सारा खत्म कर देंगे। जैविक खाद का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो खेत की जो नमी है वो बढ़ जाएगी। जैसे अगर आप पानी 10 दिन में पटवान कर रहे थे तो हो सके आपको 15 दिन के अंदर फिर पटवान
0: तो ये
1: करना
0: तो बहुत
1: पड़ेगा।
0: बड़ा फायदा है।
1: इसमें और एक सबसे खासियत है, जैविक रूप से पैदा किया हुआ जो फल फूल सब्जी है, साग है, उसका खाने में स्वादिष्ट अलग ही है,
0: ज्यादा पोषक तत्व भी
1: ज्यादा
0: इसमें होते
1: पोषक
0: हैं,
1: तत्व है,
0: हानियां भी कम है,
1: हानियां कम है।
0: अच्छा, ये जैविक खाद हम हर मौसम में बना सकते हैं?
1: बिल्कुल, जैविक खाद आप हर मौसम में, विशेषकर केचुआ खाद, हर एक मौसम में बना सकते हैं, सालों भर बना सकते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: कितना केचुआ डालने पर हमें कितने महीने में कितना खाद मिल सकता है?
1: जैसे 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, इतना बड़ा गोबर का अगर ढेर है
0: जी,
1: उसमें अगर हम 1,000 केचुआ छोड़ देते हैं तो ये 50 से 60 दिन में जो है पूरे को खा के तैयार कर देता है।
0: अच्छा
1: और खा के तैयार करने के बाद इसका रूप जो है बिल्कुल जो चाय पत्ती की तरह हो जाएगा, बिल्कुल
0: जी,
1: भुरभुरा हो जाएगा। बढ़ने के बाद इसका जो लक्षण है, इसमें आपको बिल्कुल महक नहीं आएगा, महक नहीं आएगा, सड़ेगा नहीं और बिल्कुल भुरभुरा है और चाय की पत्ती की तरह का रंग का होगा।
0: अच्छा, ये जैविक खाद खेतों में किस समय डाला जाता है?
1: जैविक खाद हम फसल लगाने से पहले भी डाल सकते हैं,
0: अच्छा,
1: या फसल की कोड़ाई के समय या
0: जी,
1: मिट्टी चढ़ाते समय हम।
0: क्या जैविक खाद के साथ पानी भी डालना आवश्यक है पौधों में?
1: बिल्कुल, पानी तो डालना आवश्यकता है, खेत में अगर नमी है तो
0: जी,
1: उसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिल्कुल जो सूखा जमीन है उसमें अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं।
0: आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: किसान भाइयों को हम यही संदेश देना चाहते हैं, जैविक खाद विशेषकर केचुआ खाद तैयार करके अगर अपना खेती करते हैं तो उनका जो खेती में जो लागत बढ़ रहा वो कम हो जाएगा और उत्पाद का दाम भी उनको अच्छा मिलेगा, तो उनको काफी फायदा होगा।
0: बिल्कुल माड़ी साहब, आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृत्रिम जैविक खाद तैयार करने की विधि और लाभ, अभी आपको इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री जी माड़ी।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: किसान भाइयों, आइए अब मौसम आधारित कृषि सलाह पर ध्यान दें। इस समय ग्वार, मक्का, बाजरा आदि चारा फसलों की आप बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी जरूरी है। बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर डालें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, अरहर और कपास की बुआई के लिए भी खेत को तैयार कर लें और बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही कर दें। किसान भाइयों, तापमान को देखते हुए सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम को ही करें, क्योंकि दिन में काफ़ी गर्मी रहती है, इससे सब्जियां सूख सकती हैं। इन्हें तोड़ने के बाद किसी छायादार स्थान पर रखें। बैंगन और टमाटर की फसल को परोह एवं फल छेदक कीट से बचाव के लिए फलों और परोहों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो सिप्नोसेट कीटनाशी 48 cc का 1 ml प्रति लीटर 4 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय आप अगर जरूरत समझें तो अपनी मिट्टी की भी जांच जरूर करवा लें, ताकि उसके अनुसार आप खेती कर सकें। ये थी मौसम आधारित कृषि सलाह। आइए सुने कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं वीणा पाणी।

अभी आप सुन रहे थे वीणा पाणी महतो की आवाज में कुर्माली लोकगीत। किसान भाई बहनों, आज विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है कि हर क्षेत्र में इसका उपयोग बढ़ गया है। कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। पारंपरिक खेती की जगह आज कई जगह वैज्ञानिक खेती की जा रही है, क्योंकि पारंपरिक खेती से कई बार सही समय पर उचित जानकारी न मिलने की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में उभर रही है, जो पारंपरिक खेती को स्मार्ट फार्मिंग में बदल रही है। खेतीर भाइयों, AI आधारित तकनीकी आपको फसल उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के कुशल उपयोग और जोखिम कम करने में सहायता करता है। AI फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, सटीक कृषि, मौसम और फसल का पूर्वानुमान, डिजिटल कृषि और सलाह जैसे कामों में काफ़ी मदद करता है। AI सेंसर मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों के स्तर और उर्वरकों के बारे में पूरी जानकारी आपको दे सकता है। इससे आप सही मात्रा में खाद का उपयोग कर सकते हैं। AI पर आधारित इमेजिंग और कंप्यूटर विजन तकनीकी फसलों में कीटों, रोगों या कुपोषण की पहचान शुरुआती चरण में ही कर लेती है। AI आधारित एप्लीकेशन बुआई के स्टम गहराई, बीज उपचार और मौसम के आधार पर सटीक सिंचाई की भी सलाह देता है। ड्रोन के माध्यम से AI फसलों की मैपिंग कर उर्वरकों और कीटनाशकों को लक्षित कर छिड़काव करता है, जिससे लागत और रसायनों का उपयोग कम होता है। AI तापमान, वर्षा और हवा की गति की सही जानकारी दे सकता है। इससे आप बुआई या कटाई किस समय पर करना ठीक होगा ये निर्णय ले सकते हैं। AI एल्गोरिदम संभावित फसल उपज का आंकलन करते हैं, जो आपके बीमा दावे और विपणन में मदद करते हैं। किसान ई मित्र चैटबॉट एक वॉइस बेस्ड AI चैटबॉट है, जो आपको आपकी भाषा में सवाल का जवाब देता है, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं की भी जानकारी देता है। खेती भाई बहनों, एग्री स्टैक पहल से आप ये जान सकते हैं कि कम लागत वाले ऋण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी जानकारियों का सही डेटा आपको दे सकता है। किसान भाई बहनों, कृषि क्षेत्र में AI का इस्तेमाल कर आप अच्छी उपज प्राप्त कर सफल किसान बन सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो जानकारी थी AI के विषय में। किसान भाइयों, ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस समय जबकि मौसम इतना बदलाव आ रहा है, कभी तेज़ बारिश हो रही है तो कभी कड़ी धूप निकल रही है, ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हमारा कार्यक्रम इसी तरह सुनते रहें। आज का साथ बस यहीं तक। नीलू को दीजिए इजाज़त। जोहार।

ये था कृषक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि जगत। कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा था FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। शाम के 6:55 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में हमारे रांची केंद्र से होगा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची समेत राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हजारों सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा, करोड़ों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास को लेकर कई निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा धनबाद में गैंगवॉर जैसी स्थिति, आम लोगों में भय का माहौल। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, प्रार्थी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। और अवैध शराब के खिलाफ रांची के 3 थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की दबिश, एक अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों सुलहनीय मामलों का विशेष बेंचों का गठन कर निष्पादन किया गया और करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली हुई। रांची सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद ने किया।

0: सरकार ने आज गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
1: बैठक हुई जिसमें शहर के कचरा प्रबंधन से लेकर परिवहन व्यवस्था से लेकर कार्यकलाप को और बेहतर करने की दिशा में तमाम नागरिकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए और मुझको लगता है कि इस बैठक का आउटकम गिरिडीह शहर को और बेहतर बनाने में मदद करेगा।
0: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त और आवश्यक मानकों के संचालित हो रहे फार्मेसी कॉलेज को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को सभी फार्मेसी कॉलेजों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर अंसारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच के लिए विशेष टीम गठित करने का भी निर्देश दिया है ताकि सभी तथ्यों की गंभीरता से पड़ताल की जा सके। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान लापरवाही, नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने पार्टी संगठन में नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के स्तर पर जो काम होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है, उसे वे उजागर करने का काम कर रहे हैं। श्री किशोर ने कहा कि पार्टी को ज्वलंत मुद्दों और चुनावी वायदे को लेकर मुखर होना होगा।
2: नाराजगी का कोई मामला नहीं है, पार्टी के असर पर जो काम करना चाहिए था वो नहीं हो रहा, लेकिन ज्वलंत मुद्दों पर अगर पार्टी चुप बैठी है तो फिर किस बात की पार्टी। जो आपने वादे किए थे, चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि साथ वादे साथ इरादे, किसी एक पर भी आप मुखर नहीं हो पाए।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गैंगस्टर प्रिंस खान के वायरल वीडियो को लेकर राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच संघर्ष नहीं बल्कि गैंगवॉर जैसी स्थिति बनी हुई है और आम लोगों में भय का माहौल है। श्री मरांडी ने कहा कि संवेदनशील जिलों में कथित रूप से करोड़ों रुपए लेकर पोस्टिंग किए जाने की चर्चाएं कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति जारी रही तो राज्य में कानून व्यवस्था और बदतर हो सकती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार वर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में आज जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ACB ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। न्यायालय ने 18 जून को मामले की अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र से इसरी बाजार में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि कल हुई इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी जबकि अन्य घायल हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग। आदिवासियों की जमीन लूट समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए आज विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री गीता श्री उराव ने कहा कि आदिवासियों को अपने हक के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से विभिन्न संस्थाओं में आदिवासी धर्म कॉलम लागू करने की मांग की।
3: आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म में जब

0: रिलीजन का कॉलम बनाते हैं तो उसमें आप अदर्स जो हमारे आदिवासियों के लिए है, सरना आदिवासी, उनके लिए आप लोगों ने कॉलम कोड क्यों नहीं रखा? और हम लोगों को आज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है।
1: उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध नकली विदेशी शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 940 पेटी शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग के अवर सहायक निरीक्षक दिलीप कुमार साहू ने बताया कि नगड़ी, रातू और धुरवा थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
2: छापेमारी में 940 पेटी विदेशी शराब बरामद किया गया। अभी जाँच किया जा रहा है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, जांच किया जा रहा है, जांच के बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी।
1: जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और 19,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं।
3: एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जामताड़ा जिला के कर्माटांड थाना क्षेत्र में ग्राम सहजपुर में कुछ साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा इस सूचना पर रेड करने के दौरान घटनास्थल से 3 अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से जो बरामद हुआ है 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और लगभग 19,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। इन लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक अभियुक्त में।
1: और अब मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में आज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी 15 मई तक तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हजारों सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा, करोड़ों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास को लेकर दिए कई निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा धनबाद में गैंगवॉर जैसी स्थिति, आम लोगों में भय का माहौल। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, प्रार्थी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। और अवैध शराब के खिलाफ रांची के 3 थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की दबिश, एक अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: बोकारो वासी पिछले कई सालों से बोकारो एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान शुरू होने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीति तेज है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा, गंदी राजनीति करने के बजाय सभी को एक साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है।
2: हम आग्रह करना चाहेंगे फिर उसे साथियों से कि अगर जरा सा भी बोकारो का हितैषी है, हमदर्दी है, तो सरकार में आप हैं, डीसी साहब से बात कीजिए और एक बैठक रख के इसको निराकरण हो, समाधान हो। कौन नहीं चाहता फ्लाइट चले? सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता यहाँ पे विधायक है, यहाँ दो दो विधायक सत्ता पक्ष के है कि नहीं? हम बीजेपी के सांसद हैं, हमारे बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के यहाँ पूर्व हमारे नेता लोग हैं, सारे लोग बैठ के बात करके निराकरण निकालेंगे। आरोप प्रत्यारोप लगा के हवाई अड्डा नहीं चल सकता है, जहाज नहीं उड़ सकता है, बैठ के समाधान हो सकता है, बैठ के ही हम लोग इसका निराकरण कर सकते हैं।
1: कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने बताया, बोकारो एयरपोर्ट के संचालन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रोड़ा बना हुआ है।
3: कमजोर अगर कोई कड़ी है एयरपोर्ट शुरू ना होने में, तो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। जनता को गुमराह करना एक बात है, राजनीति करना एक बात है, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होना चाहिए कि पब्लिक को सही पिक्चर दिखाना कि कब तक एयरपोर्ट शुरू हो, हम क्या क्या होमवर्क कर रहे हैं, कब तक शुरू होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये भी उनको बता देना। लेकिन हम एक प्रतिनिधि होने के नाते ये पूरा अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि एयरपोर्ट शुरू होगा, ये हम बहुत, इसके लिए मेरा बहुत विश्वास है कि मुझे जो प्रॉमिस मेरी गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से मेरा प्रॉमिसेस है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो मिनिस्ट्री से जो प्रॉमिसेस है वो उनका भी बहुत क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों का भी, कि एयरपोर्ट बोकारो में शुरू होगा, बोकारो में ही शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेटअप बना हुआ है।
1: दूसरी तरफ उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया, एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू करने से पूर्व आवश्यक आधारभूत संरचना का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है।
4: भारत सरकार की एजेंसी से दोनों बैठ करके आपस में अब एक पेज पर है, बातचीत हो रही है और दोनों का कोऑर्डिनेशन है। कैसे भी आए हुए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लोग आए हुए हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों ने टाइम लाइन दिया, बहुत सारे काम है जो वो 15 तारीख तक पूर्ण करेंगे और बहुत सारे काम है जो नक्शे का छोटा छोटा है वो 30 मई तक पूर्ण कर लेंगे। तो लगभग मई हमारा पूरा उनके आपस में कार्य को पूर्ण कर लेने का होगा। हमको लगता है कि जून में ये इंस्पेक्शन होकर ये रेडी रहेगा।
1: बोकारो में लगभग प्रतिदिन हो रही बेमौसम बरसात से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है, तो दूसरी तरफ किसान चिंतित हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन और जिले में आजकल प्रसारित हो रहा था आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। शाम के 7:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए बांग्ला प्रेमी श्रोताओं के लिए बांग्ला कार्यक्रम।

0: ये था बांग्ला प्रेमी श्रोताओं के लिए बांग्ला कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से हुआ।
1: मन की बात।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर। आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कसे क्लिक में, अरे वाह।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: शाम के 7:45 हो चुके हैं, हमारे केंद्र से आप थोड़ी देर में अंग्रेजी कार्यक्रम सुनिएगा।

आप सुन रहे थे अंग्रेजी कार्यक्रम। हमारा ये प्रसारण आप FM 102.4 MHz पर सुन रहे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
0: नमस्कार जमशेदपुर।

श्रोता, हम आपको याद दिला दें राष्ट्रीय प्रसारण के आज के कार्यक्रमों में रात 8:45 पर सुनिएगा हिंदी समाचार बुलेटिन समाचार संध्या। रात 9 बजे का समय अंग्रेजी समाचार बुलेटिन न्यूज़ @9 का,

करंट इवेंट्स के मुद्दों पर अंग्रेजी में इंटरव्यू का प्रोग्राम होगा स्पॉटलाइट रात 9:15 पर। संस्कृति भारती ये राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका सुनिएगा रात 9:30 से। रात 10 हम आपके लिए लेकर आएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आज राजकुमार मजुमदार के संतूर वादन का आनंद लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रसारण के ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से लेकर आपको सुनाएंगे। शाम के 7:58 हो चुके हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम थोड़ी ही देर में सुनिएगा आप। बने रहिए हमारे साथ, हमारी प्रसारण सेवा के साथ।

0: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।
1: आकाशवाणी जमशेदपुर से हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं हमारे 2.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बज चुके हैं, जुड़िए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम फिल्म संगीत से और लीजिए फिल्मी गीतों का आनंद। आइए सुने इस कार्यक्रम का पहला गीत।

अभिजीत भट्टाचार्य और साथियों का गाया ये गीत हमने आपको यस बॉस फिल्म से सुनवाया, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी जतिन ललित ने। आपको कहीं जाने की जल्दी तो नहीं? तो चलिए।

बॉम्बे फिल्म के इस नगमे के लिए आवाज़ें थी के एस चित्रा, ए आर रहमान और साथियों की। महबूब ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था ए आर रहमान ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

फिल्मी गीतों का आनंद ले रहे थे आप फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय प्रसारण के कार्यक्रम सुनिएगा। इसमें पहले देश और दुनिया की खबरें बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों में होंगी।

हिंदी समाचार बुलेटिन अब से बस कुछ ही पलों में 8:45 पर और रात 9 बजे अंग्रेजी समाचार बुलेटिन न्यूज एट 9 सुनिएगा। समसामयिक मुद्दों पर अंग्रेजी में इंटरव्यू का प्रोग्राम स्पॉटलाइट रोज सुनते हैं, आज भी सुनिएगा 9:15 पर। राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती का प्रसारण समय 9:30। और रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आनंद लीजिए राजकुमार मजुमदार के संतूर वादन का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोड़ासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही है। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. Five MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R. N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
5: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held meeting with the Chief Secretary, Home Secretary and other officials of the state at the PWD tent at Maidan. Meanwhile, renovation works are underway at the Writers Building in Kolkata for reshifting of the Secretariat of the State Government, which was shifted from this heritage building to the Navanno after Mamata Banerjee came to power in 2011. The new BJP government will work from the Writers Building, which is a heritage structure. In an important development today, Special Observer for the West Bengal for SIR, retired IAS officer Subrata Gupta has been appointed as the advisor to the Chief Minister of West Bengal, and the 2017 batch IAS officer Shantanu Bala appointed as the personal secretary to the CM. It is learned that on 30th May, the newly elected MLAs of West Bengal will take oath at the assembly in Kolkata. Kollan Laha reporting from Kolkata.
4: The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats.

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से, मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगु थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करूं, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेते थे और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहाँ भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
0: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं. हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है. भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है. तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है. शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है. इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े. ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास. उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं. हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं. मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं. भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है. और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है. कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप हैं जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट. तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं. दे आर अवर रियल ब्रांड.
3: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे. सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया.
5: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाया है. 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली. मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला. मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था. मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई. मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ.
6: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है. मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में. हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली केंद्र में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था. उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था. उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है. भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में, और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं. भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए, और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे. और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी, और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है. और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए, और आपको सफलता मिलेगी.
2: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
3: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
2: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।

0: भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहां अलग अलग संस्कृतियां नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं प्रांजल।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी सौ सौ रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
3: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।
4: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादरवाड़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे। तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9-10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादरवाड़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो वो वहाँ पे आए थे। तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
5: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
0: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख।

0: ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
1: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
0: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
1: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
0: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
2: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज हैं, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रैली ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए। हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में, सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया, उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
1: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद,
0: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
1: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
0: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
0: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
1: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल,
0: और मैं नेत्रा।
4: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए, पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पीवी काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया। इसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santur under the guidance of the legendary santur maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
0: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसमोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आब होगी। मध्य लय व दूत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was राग जनसम्मोहिनी। Continuing his recital, he now presents राग अभोगी। मध्य लय एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor Recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल

दिल्ली केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की यह सभा अब संपन्न होती है। इसी अवधि पर हमारी कल की सभा आरंभ